0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कई बंदे ना अपना विजिटिंग कार्ड अपना मुंह खोलने से पहले दे देते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू इन दिस केस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. हमारे ऑफिस में एक नया बंदा आया. नाउ दिस गाय, आई एम 100% श्योर कि रोज शाम को इसकी मम्मी इसे सब्जी लेने भेजती है सब्जी मंडी, क्योंकि ये जैसे मुझसे हैगल कर रहा था ना, आई वॉज लाइक यार तेरे स्किल्स कितने कूल हैं. सो ही इज़ ऑब्वियो अ लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन मी एंड आई टोल्ड हिम कि आई एम हैप्पी सिंगल, मुझे अभी रिलेशनशिप का कोई शौक नहीं है ये वो. ठीक है, सो ही इज़ टेलिंग मी कि अच्छा ठीक है रिलेशनशिप नहीं तो हम फ्रेंडशिप ट्राई कर सकते हैं. तो ऐसे मुझे नहीं चाहिए फ्रेंडशिप, मेरे पास जितने फ्रेंड्स हैं मैं खुश हूँ. तो कह रहा है कि मैं HR से बात करके अपनी सीट तेरे साथ चेंज कर सकता हूँ, यू नो लाइक हम इकट्ठे पार्टनर्स होकर बैठ सकते हैं. तो आवाज है कि हैगल क्या कर रहा है यार, नहीं करनी तुझसे बातें, नहीं बनाना है तुझे फ्रेंड, नहीं बनाना है आपके लिए हलवा, आपको समझ में नहीं आ रहा मालिक. बट आई ऑनेस्टली

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आपने ऑनलाइन विग्स और हैंडकफ्स ऑर्डर किए हैं बिकॉज यू आर जस्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स गेटिंग रियली नॉटी इन बेड, लेकिन आप ये शेयर करना चाहते हो किसी के साथ बिकॉज इट्स सच एन ऑसम फीलिंग और अभी तक आपको ऐसा कोई नहीं मिला हु विल नॉट जज यू फॉर दिस, यू कैन चेंज दैट राइट नाउ.
2: सीक्रेट बॉक्स.
1: जी हाँ, नाउ इज द टाइम एंड दिस इज द प्लेस टू मेक एनी कन्फेशन यू वॉन्ट टू मेक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. हिट मी अप, DM मी विद योर नंबर एंड योर कन्फेशन एंड आई विल call you like I called my mystery caller. Hi, mystery caller.
3: Hello, Roshi.
1: How are you, mystery caller?
3: I'm good, Roshi. How are you?
1: मतलब इतना sexy sound करने की क्या ज़रूरत है?
3: I mean, I get that a lot. That's how my voice is.
1: Oh, so humble. I get that a lot. लेकिन क्या करूँ, आवाज़ ही ऐसी है. अच्छा तो ये बताओ, Mr. Humble and Modest Mystery Caller, आपकी secret confession of the day क्या है?
3: जब you are in college. And you are staying in a PG and you are in a living relationship, so you tend to move together. And we decided that we would not get fat.
1: Okay, that's a very reasonable thing to do.
3: Yeah, but it's very difficult because once you're staying with your partner and at a home and doing nothing, you tend to eat. But we decided to stay healthy. And we decided that some healthy khana aega. हम लोग सिर्फ हेल्दी खाना खाएंगे सो दैट वी डोंट गेट फैट बिकॉज फॉर द फिटनेस कॉन्शियस हो जाता है. बट द वर्स्ट पार्ट इज आई गेट टू गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग. व्हेन आई गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग आई डू जस्टिस टू द ग्रोसरी शॉपिंग बट आई ऑल्सो डू जस्टिस विथ माई चीट डे.
1: ओके,
3: दैट इज व्हेन आई गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग से यू नो ऑल्टरनेट डेज आई टेंड टू हैव आइसक्रीम्स, आई टेंड टू हैव फ्रैंकीज.
1: बिना अपनी गर्लफ्रेंड को बताए?
3: बिना अपनी गर्लफ्रेंड को बताए.
1: हे भगवान, यहाँ आपकी गर्लफ्रेंड सैलेड पे जी रही है थिंकिंग कि मेरा बेबी भी सैलेड ही खा रहा है मेरे साथ. हाउ डेडिकेटेड. आप वहाँ फ्रैंकीज और आइसक्रीम्स खा रहे हो?
3: हाँ, बिकॉज यू नो वंस यू सी दैट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल हैविंग इट यू कांट रेजिस्ट योरसेल्फ.
1: आई कांट बिलीव यू. ये तो फ्रैंकीज के साथ है. अगर आप बाहर हुए और आपके सामने कोई बहुत हॉट लड़की आ गई हु इज हॉटर देन योर गर्लफ्रेंड, फिर आप
3: बोलोगे दैट इज ओनली विद फूड.
1: अच्छा ये बताओ, अगर किसी दिन आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको पकड़ लिया फ्रैंकीज खाते हो और आइसक्रीम्स ठूसते हो अपने मुंह में, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू टू सेव द डे?
3: या दैट्स वन क्वेश्चन.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, लॉग ऑन टू lionmtg.com। मोदक से लेकर लड्डू तक, इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
1: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

कई बार हमारे प्यार की टाइमलाइन लुक्स अ लॉट लाइक द ईसीजी ऑफ अ सीरियसली लाइक डेवेस्टेटेड हार्ट पेशेंट, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम इस बंदे के साथ हैं, वी हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप बट इट्स नॉट वर्किंग आउट एनी मोर, हम उसके साथ ब्रेकअप कर लेते हैं. कट टू एक दो हफ्ते गुजरते हैं, उसके बाद हमें इस बंदे की याद आती है, हम इस बंदे को फिर मैसेज करते हैं, ही इज़ लाइक हाँ यार कैसी है तू, आई रियली मिस यू, देन यू गेट बैक विद दैट पर्सन. फिर आप तीसरा चौथा पांचवा छठा सता इट सीम्स आई जस्ट मेड अ न्यू वर्ड सातवा ब्रेकअप कर लेते हो. बट द ट्रूथ इज़ कि कई लोगों की रिलेशनशिप की टाइमलाइन ऐसी ही होती है.

आई रिमेंबर आई वॉज वंस डेटिंग दिस गाय और हमारा रिलेशनशिप 3 लंबे साल चला. उसमें आई थिंक हमने 300 बार ब्रेकअप किया होगा और जितनी बार ब्रेकअप के बाद हम वापस आते थे आर रिलेशनशिप फेल्ट मोर इंटेंस समहाउ इवन डीपर एंड मोर मीनिंगफुल. इट्स अनदर थिंग कि हम उस ब्रेकअप वाले रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर पाए. But now that I look back and think about it, I think it was one of my most beautiful relationships ever. And tab mujhe lagta hai ki shayad har relationship ki kismat nahi hoti hai to turn into a marriage or a forever after. But iska ye matlab bhi nahi hai ki relationships lose their meaning because wo forever after aur shaadi ke bandhan mein nahi bandhe hain. Aur agar aapki bhi zindagi mein aisa hi koi quirky AF relationship hai, I want to know your story, Morning Glory, aur uske bare mein batane ke liye aap mujhe dhoond sakte ho Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai ROCHIE. So go ahead and do it. Whatever you have to do, lekin kahin mat jana jana, kyunki wapas to yahi hai aana. And I am not breaking up with you. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
2: Oh, no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
4: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
5: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 104.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कुछ भी कर लो, कुछ भी जिंदगी में, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे खुश नहीं होगी. दिस इज अ जेनेरिक फैक्ट. और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं भाइयों और बहनों, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ वीडियोस वेटिंग फॉर यू, बट राइट नाउ मेरे साथ लाइन पर रिधिमा है. हाय रिधिमा.
2: हाय रोशी,
1: कैसे हो आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
1: यार मैं सेक्सी एज ऑलवेज, क्या बताऊँ अब आपको. अपने मुंह मियां मिट्ठू भी तो नहीं बनना चाहिए ना, मेरी मम्मी ने सिखाया था मुझे.
2: नहीं नहीं, आपको अलाउड है.
1: यू आर सो क्यूट, आपको अलाउड है. बट आप मुझे ये बताओ कि आप सिंगल हो या एक रिलेशनशिप में हो?
2: मैं रिलेशनशिप में हूँ.
1: वाह,
2: तो लेकिन उससे बेहतर है मैं सिंगल रहूँ.
1: क्यों?
2: मैं बहुत फैशन कॉन्शियस हूँ. और जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, उसे फैशन का एफ भी नहीं पता है.
1: सीरियसली?
2: हाँ.
1: तो यार क्या फर्क पड़ता है? I mean, isn't that a good thing? कि सारी नजरें आप पर होंगी, आपके बॉयफ्रेंड को कोई नहीं देखेगा मेरे हिसाब से.
2: रोशी,
1: तो
2: आई एम अ फैशन ब्लॉगर, मुझे दिखाना पड़ता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और इसका फैशन सेंस अच्छा है और इसका फैशन सेंस बहुत ही बुरा है.
1: तो आप कब से डेट कर रहे हो इस बंदे को? जब डेट कर रहे थे तब नहीं देखा था कि मैं फैशन ब्लॉगर?
2: बचपन से. सिक्स क्लास से वी आर डेटिंग ईच अदर.
1: Oh,
2: और हमें बचपन से ही पता था हाँ हम दोनों ही डेट करेंगे. हाँ. लेकिन परेशान हो गई हूँ बहुत. उसका फैशन सेंस मैंने सब ट्राई कर लिया लेकिन वो नहीं ठीक हो सकता.
1: तो आप अपने फैशन ब्लॉग पे क्यों बोल रहे हो दैट यू हैव अ बॉयफ्रेंड? बोलो ही मत ना दैट यू हैव अ बॉयफ्रेंड, से दैट यू आर सिंगल.
2: यार शो ऑफ करना भी तो बनता है ना.
1: यार अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे फैशन ब्लॉगिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई बचपन का प्यार, तो इस बंदे को डंप कर लो और एक नया बॉयफ्रेंड बना लो हु इज मोर फैशनेबल. नहीं,
2: इतना भी नहीं कर सकते यार, दिल टूट जाएगा.
1: किसका? उसका कि आपका?
2: दोनों का.
1: ओह यू लव हिम सो मच. अच्छा ठीक है, तो फिर एक और चीज आप जो कर सकते हो वो ये है, अपने बॉयफ्रेंड को ना अपना प्रोजेक्ट बना ले अपने फैशन व्हाटएवर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के लिए. ठीक है? सो यू बेसिकली टेल देम कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड कितना अनफैशनेबल है, बट देखो मैं ऐसे 6 महीने में कितना फैशनेबल बनाती हूँ. इससे दो चीजें होंगी, लोगों को लगेगा कि आप रियल लाइफ में ऐसा कर सकते हो, लोगों को बदल सकते हो, उनके फैशन सेंस को बदल सकते हो. एंड एक बार आपका बॉयफ्रेंड ऐसे फेमस हो जाएगा फॉर बीइंग योर प्रोजेक्ट, वो कभी वापस अपने पुराने फैशन सेंस में नहीं जाएगा.
2: दैट्स अ गुड आइडिया, थैंक यू रोशी.
1: यू आर मोस्ट वेलकम माय डार्लिंग, मेरा तो काम ही लोगों की मदद करने का. अच्छा और ऑफलाइन ना, आई एम गोइंग टू फॉलो यू एंड नेवर अनफॉलो यू इन माई लाइफ. आई लव यू. थैंक
2: यू. आई लव योर कॉन्टेंट.
1: थैंक यू सो मच माई डार्लिंग, इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही रिधिमा की तरह

जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखो, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो, हैं ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए @ मिर्ची जीतूराज, समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपके एक्स बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है, उसकी शादी में सिर्फ एक महीना बचा है एंड यू रियलाइज कि अरे ये तो मेरा सच्चा प्यार है एंड देन यू डिसाइड कि एक महीना बचा है, दैट्स 30 डेज, आई कैन स्टिल ट्राई एंड विन हिम बैक. क्या आप ऐसा करोगे, हाँ या ना? मेरी बेस्टी की एक कजन है एंड शी काइंड ऑफ मतलब ब्रोक अप विद हर बॉयफ्रेंड, वेंट टू अमेरिका. अब वो वापस आई है काम नाम छोड़ के, डिसाइडेड टू लाइक सेटल डाउन इन इंडिया. और

उसने रियलाइज किया कि आई जेन्युइनली स्टिल हैव द हॉट्स फॉर माय एक्स बॉयफ्रेंड और मैं उसे वापस पाना चाहती हूँ, एक्सेप्ट टाइनी लिटिल प्रॉब्लम, उसकी शादी हो रही है एक महीने में, बट इंस्टेड ऑफ बैकिंग ऑफ शी इज सेइंग कि क्या फर्क पड़ता है, मैं इन 30 डेज में उसका दिल टर्न अराउंड ऐसा करूंगी दैट ही विल वांट टू बी विद मी. नाउ आई डोंट नो इफ एथिकली, मॉरली, रोमांटिकली ये सही चीज है टू डू और नॉट. And because I'm confused about it, I thought I will ask you कि आपको लगता है कि what she's trying to do, basically win her ex-boyfriend back in 30 days, is that a right thing or a wrong thing or a maybe thing, या फिर प्यार में आदमी पागल हो जाता है? I don't know. Whatever your answer to that is, hit me up on the gram या Facebook and tell me what you think about it. मेरा नाम है Mirchi Roshi, नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. So go ahead and do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो Mirchi. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: लाइक इन लाइफ ऑनेस्टली मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को इसलिए डंप किया है बिकॉज दे वर सो ग्रम्पी. ये खड़ूस वैरायटी हैज बीन सो इरिटेटिंग फॉर मी बिकॉज उनके हिसाब से या तो उनकी तरह से काम करो या टेक द हाईवे. एंड आई यूजुअली टुक द हाईवे एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट क्योंकि एक नई रिसर्च के हिसाब से द वन थिंग जो एक रिलेशनशिप को परमानेंटली डैमेज कर सकती है वो ये है दैट अगर सामने वाला पार्टी, जैसे मेरे पापा कहते हैं कि ओ जेडी पार्टी है, सामने वाली पार्टी अगर खड़ूस हो ना तो फिर इट्स अ डील ब्रेकर ब्रो. एंड मोर पीपल बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ये वो चाहते हैं कि सामने वाले इंसान की जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो, आपकी जो भी डिजायर्स एंड एक्टिविटीज हैं वो मनूवरेबल हो ताकि बोथ ऑफ द पीपल कैन डू वॉट दे बोथ इंजॉय डूइंग इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग जो एक इंसान करना चाहता है. तो टू कोट माई डैड, अगर सामने वाली पार्टी फ्लेक्सिबल नहीं है तो काम ही नहीं करना उनके साथ. सिमिलरली अगर सामने वाली पार्टी फ्लेक्सिबल नहीं है तो रिलेशनशिप में ही नहीं रहना उनके साथ. और मेरी तरह अगर आपने भी ऐसे ग्रंपी लोगों को लेफ्ट राइट एंड सेंटर रिजेक्ट किया है, आई थिंक वी शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड कंपेयर नोट्स. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी, लेट्स गेट टॉकिंग एंड व्हाटएवर यू डू. कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आपने ऑनलाइन विग्स और हैंडकफ्स ऑर्डर किए हैं बिकॉज यू आर जस्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स गेटिंग रियली नॉटी इन बेड, लेकिन आप ये शेयर करना चाहते हो किसी के साथ बिकॉज इट्स सच एन ऑसम फीलिंग और अभी तक आपको ऐसा कोई नहीं मिला हु विल नॉट जज यू फॉर दिस, यू कैन चेंज दैट राइट नाउ. जी हाँ, नाउ इज द टाइम एंड दिस इज द प्लेस टू मेक एनी कन्फेशन यू वॉन्ट टू मेक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. हिट मी अप.

0: DM me with your number and your confession, and I will call you like I called my mystery caller. Hi, mystery caller.
1: Hello, Roshi.
0: How are you, mystery caller?
1: I'm good, Roshi. How are you?
0: मतलब इतना sexy sound करने की क्या ज़रूरत है?
1: I mean, I get that a lot. That's how my voice is.
0: Oh, so humble. I get that a lot. लेकिन क्या करूँ, आवाज़ ही ऐसी है. अच्छा तो ये बताओ मिस्टर हम्बल एंड मॉडेस्ट मिस्ट्री कॉलर, आपकी सीक्रेट कन्फेशन ऑफ द डे क्या है?
1: जब यू आर इन कॉलेज एंड यू आर स्टेइंग इन अ पीजी एंड यू आर इन अ लिविंग रिलेशनशिप, सो यू टेंड टू मूव टुगेदर एंड वी डिसाइडेड दैट वी वुड नॉट गेट फैट.
0: ओके, दैट्स अ वेरी रीजनेबल थिंग टू डू.
1: या बट इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वंस यू आर स्टेइंग विद योर पार्टनर एंड एट अ होम and doing nothing, you tend to eat. But we decided to stay healthy. And we decided that some healthy khana aega. And we will healthy khana khayenge so that we don't get fat. Because for the fitness conscious, ho jata. But the worst part is, I get to go for grocery shopping. When I go for grocery shopping, I do justice to the grocery shopping. But I also do justice with my cheat day.
0: Okay.
1: That is, whenever I go for grocery shopping, say, you know, alternate days, I tend to have ice creams, I tend to have Frankies.
0: बिना अपनी girlfriend को बताए.
1: बिना अपनी girlfriend को बताए.
0: हे भगवान, यहाँ आपकी girlfriend salad पे जी रही है, thinking कि मेरा पीपी भी salad ही खा रहा है मेरे साथ. How dedicated. आप वहाँ Frankies और ice creams खा रहे हो?
1: हाँ, because you know, once you see that in front of you, people having it, you can't resist yourself.
0: I can't believe you. ये तो Frankies के साथ है. अगर आप बाहर हुए और आपके सामने कोई बहुत hot लड़की आ गई, who's hotter than your girlfriend, फिर आप
1: बोलोगे. No, this happens only with food. Just to be clear.
0: अच्छा ये बताओ, अगर किसी दिन आपकी girlfriend ने आपको पकड़ लिया Frankies खाते हो और ice creams ठूसते हो अपने मुँह में, तो आप क्या करोगे? What will you do to save the day?
1: Yeah, that's one question I have no answer to, but it'll be like, I'll be having this Frankie and half of it will be in my mouth and I won't be able to chew it.
0: You know what?
1: The shock.
0: I can roshify you and hope that wo roshification ke baad wo din hi na aaye jab aap pakde jao. How does that sound?
1: That sounds amazing.
0: Then ek gehri saans lijiye because
2: you've been roshified.
0: All the best, my darling. I hope कि आप कभी पकड़े ना जाओ. Thank you so much for sharing this very very naughty confession with me. और अगर आपने भी अपने पार्टनर की आंखों में धूल झोंकी है सिर्फ Frankies और आइसक्रीम्स के चक्कर में, तो आपको नहीं लगता हमें इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए? And to do that, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: का कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: गाना हॉट है।
1: ये था गुची, संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली, कंपोज्ड बाय प्रीतिंदर, लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्सिंग। फुल ऑन मिर्ची बैंगर, इट्स हॉट।

जिंदगी में हमें कई बार ऐसा लगता है जब हम एक नया रिलेशनशिप बनाते हैं उसमें किस लेवल तक हम अपनी ट्रू जिंदगी को कन्फेस कर सकते हैं इन अ कपल ऑफ वीक्स या मंथ्स डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोज एंड इंटीमेट योर पार्टनर इज विद यू. अगर आप उनके साथ अपनी जिंदगी के स्पेशली वो पीरियड्स ऑफ योर लाइफ व्हिच हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू वो शेयर करते हो ना देन ऐसी कन्फेशंस कैन एक्चुअली हेल्प यू बॉन्ड बेटर. आई रिमेम्बर मेरे लास्ट रिलेशनशिप में आई डिस्कस माई एक्सट्रीमली चेकर्ड रिलेशनशिप विद माई डैड विद माई देन बॉयफ्रेंड और हमें डेट करते हुए शायद उस वक्त 2 ही महीने हुए थे बट बिकॉज आई शेयर्ड समथिंग सो क्लोज टू माई हार्ट विद हिम ही कुड शेयर विद मी कि उसके और उसकी मम्मी का रिलेशनशिप भी कुछ वैसा ही था जो मेरे डैड और मेरा है एंड दैट गॉट अस सो क्लोज टुगेदर ना दैट जब हम ब्रेकअप कर रहे थे हम एक दूसरे से यही डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसी कॉन्वर्सेशंस ऐसी इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस अबाउट द वूंड्स ऑफ आवर हार्ट हम किसी और से नहीं कर पाए हैं. So maybe having real life confessions with your partner is not such a bad idea because it actually helps you bond better. But जब आप ऐसा कर रहे हो ना make sure कि आपका partner आपकी सारी insecurities और wounds के बारे में sensitive हो क्योंकि अगर

ऐसा नहीं होगा ना, देन देयर इज नो पॉइंट ओपनिंग अप बिकॉज इट माइट एंड अप एक्चुअली मेकिंग योर वूंड्स इवन वर्स. सो यूज योर डिस्क्रेशन, यूज योर जजमेंट. और अगर आपको इसमें किसी की मदद की जरूरत है, मैं तो हमेशा ही अपने आप को आपका रोशी कहती हूँ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. तो सोच क्या रहे हो, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. एंड व्हाइल यू डू दैट, लेट मी टेल यू दिस, जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तो का ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

महमूद साहब पूरी रात किशोरदा के घर के सामने बैठे रहे पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। उनके गार्ड ने ना जाकर के किशोरदा को बताया कि अरे महमूद रात भर यहीं बैठे रहे। वेल, ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म पड़ोसन। अब हुआ ये कि पड़ोसन का फेवरेट कैरेक्टर, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो विद्यापीठ ही होगा, यानी किशोरदा का प्लेट कैरेक्टर। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि किशोरदा एट दैट टाइम वाज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग अ फिल्म, मतलब उनको एक्टिंग करनी ही नहीं थी। लेकिन महमूद साहब जो ये फिल्म बना रहे थे उन्हें पता था कि इस जोवियल कैरेक्टर में अगर कोई फिट हो सकता है तो वो किशोरदा है। किशोरदा को वो मनाने गए लेकिन किशोरदा ने साफ मना कर दिया, तो महमूद जी उनके घर के सामने डेरा डाल के बैठ गए कि जब तक वो हाँ नहीं कहेंगे वो वहां से नहीं हिलेंगे। सो किशोरदा ने ये फिल्म की एंड गेस व्हाट, किशोरदा इतने कमाल थे कि जब फिल्म के रशेस सुनील दत्त साहब जो कि फिल्म के मेन लीड थे उन्होंने देखे तो ही वॉज वेरी वॉरिड कि ये क्या हुआ है, ये तो किशोरदा के नाम की फिल्म हो जाएगी। तो उन्होंने और महमूद साहब ने किशोरदा के कुछ कुछ सीन्स एक्चुअली में चॉप भी किए एंड ये बात किशोरदा को पता थी एंड ही डिड नॉट माइंड क्योंकि उनका प्यार तो बस गाना था। ऑलराइट, ऑन दैट नोट, हेलो एंड वेलकम, दिस इज मी श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स। आज और किस किस के किस्से लेकर के आई हूँ सब बताऊंगी एक एक करके, जल्दी से वापस आओ ओनली ऑन मिर्ची

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।

0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

काका ना हमेशा से अपनी फिल्म में एक काना खुद पे ऐसा जरूर पिक्चराइज कराते थे जो कि किशोर दा ने उनके लिए प्लेबैक किया और पंचम दा ने उनके लिए यू नो कंपोज किया हो, जिसमें वो बस हरफन मौला की तरह जिंदगी को एंजॉय करते हुए आगे चले जा रहे हैं, जैसे कि ये गाना फ्रॉम द फिल्म मेरे जीवन साथी। वेल, अब इस फिल्म को बनाने में पता है क्या हो रहा था, क्योंकि काका यानी राजेश खन्ना जब किसी फिल्म में आ जाते थे तो भाई सुपरस्टार थे और उनका जो पैसा होता था वो फिल्म के बजट को ऑलरेडी शूट कर देता था। ऐसे में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स क्या करते थे कि वो हीरोइंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते थे। तो ये जो फिल्म थी, दिस वॉज ऑफर्ड टू साधना जी, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, वो भी टॉप क्लास हीरोइंस, उनके पैसे जो थे वो कम ही नहीं हो रहे थे, दे आस्क फॉर अच्छा खासा पैसा। अब भाई प्रोड्यूसर थोड़ा परेशान हुए कि मैं दो दो स्टार्स को एक साथ कैसे फिट करूं, तो ऐसे में राजेश खन्ना ने उनको सजेस्ट किया तनुजा जी। एंड तनुजा जी जो उस समय एक्चुअली में ए ग्रेड फिल्मों को देखना चाह रही थी, उसमें काम करना चाह रही थी, बड़े

एक्टर्स और बड़े एक्टर्स के साथ शी सेड यस एंड दिस फिल्म मेरे जीवन साथी वाज एक्चुअली अ हिट। पुरानी जींस पे इसी फिल्म का गाना मैंने आपको सुनाया था, अब कौन आ रहा है? आहा, मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये गाना ऋषिकेश दा के एक टेली सीरीज आई थी जिसका नाम था तलाश. ओके, 90s में टेलीविजन सीरियल आया करता था और ये गाने की लाइन उसमें यूज हुई थी. पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ हेमंत कुमार का ये गाना जो कि उन्होंने खामोशी फिल्म के लिए गाया है और ना कंपोज भी उन्होंने ही किया था. अब ऋषिकेश दा की एक टेली सीरीज जिसका नाम था तलाश, उसमें इस गाने की लाइन को यूज किया गया था. जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है. वेल, दिस इज फ्रॉम द फिल्म खामोशी जिसमें थे राजेश खन्ना और वहीदा रहमान. एक्चुअली में डायरेक्टर साहब तो लेना चाहते थे देव आनंद जी को, लेकिन वहीदा रहमान ने काका को सजेस्ट किया था और ये फिल्म अच्छी खासी पॉपुलर हुई थी. और भी क्या क्या किस्से उस जमाने के लेकर के आई हूँ एक साथ थोड़ी ना बताऊंगी. गाने सुनकर के वापस आओ. दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि

0: सन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतू राज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राजेश खन्ना और मुमताज जी की हिट जोड़ी का एक और ये खास गाना फ्रॉम देयर फिल्म आपकी कसम। पुरानी जींस पे आप और श्रेया के साथ, और जब काका पर्दे के उस पार होते थे तो उनकी आवाज पीछे से कौन बनता था? ऑफ कोर्स इट हैज टू बी किशोरदा। वेल, ये फिल्म की ना एक और खास बात है, यूके में एक नया नया इंडियन थिएटर खुला था, इंडियन सिनेमा खुला था, और उसका नाम था नटराज। वहां पे पिक्चराइज यानी वहां पे दिखाने वाली ये पहली इंडियन फिल्म थी आपकी कसम। इसी फिल्म का गाना मैं लेकर के आई थी। अगला कौन सा है? हाँ, चलो किशोरदा की बात हुई है, किशोरदा का ही एक और गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: It's hot.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ये पहली फिल्म थी जीतू जी और गुलजार साहब के एक साथ। पुरानी जीन्स पे आपको श्रेया के साथ ये गाना इज फ्रॉम द फिल्म परिचय। नाउ दिस वाज द फर्स्ट फिल्म इन द सीरीज ऑफ थ्री फिल्म्स जो कि गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी और जितेंद्र जी पे पिक्चराइज थी। द अदर टू फिल्म्स जो थी वो थी एक खुशबू और दूसरी थी किनारा। दोनों में इतनी अच्छी जमी कि दोनों ने तीन फिल्मों में एक साथ काम किया, यानी इन तीनों फिल्मों में गुलजार साहब ने डायरेक्ट किया और जीतू जी ने उसमें काम किया। वैसे बाय द वे जो अदर टू फिल्म्स थी यानी खुशबू एंड किनारा, ये दोनों जीतू जी के ही बैनर के अंडर बनी थी और उसका नाम तब था तिरुपति पिक्चर्स। और इन तीनों में ऑफ कोर्स आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक एंड गुलजार साहब के लिरिक्स थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
4: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हूँ।

0: सा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
1: घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम।

बहुत ही खास बात है इस गाने में, क्योंकि बच्चन साहब के गाए हुए कलेक्शन का ये पहला गाना था। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ, दिस सॉन्ग इज सॉन्ग बाय अमिताभ बच्चन जी, और ये उन्हीं की मूवी मिस्टर नटवर लाल का गाना है। लेकिन उन्होंने इतने सारे जो गाने गाए ना, ओ साथी रे, आज रपट जाए तो, नीला आसमास हो गया, मच गया शोर, एंड सो मैनी ऑफ देम, अमर अकबर एंथनी, सो मैनी ऑफ देम, उनमें यानी इस टैलेंट में, उनके गाने के टैलेंट में ये गाना पहला गाना था, मेरे पास आओ। राजेश रोशन ने कंपोज किया था एंड ही एक्चुअली वेंट एंड सजेस्टेड दिस टू बच्चन साहब कि इस गाने में मुझे आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। अगर शायद राजेश रोशन ना होते और बच्चन साहब को कन्विंस ना करते तो हमें बच्चन साहब की आवाज़ इतने ढेर सारे गानों में मिलती ही नहीं। ऑलराइट, और कौन कौन सी बातें हैं उस जमाने के, एक एक करके बताऊंगी। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये गाना तो पंचम दा ने इस फिल्म के लिए बनाया ही नहीं था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना ना, दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग मैंने पूछा चांद से, आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, रफी साहब ने गाया। नाउ दिस फिल्म के लिए गाना बना ही नहीं था। अब्दुल्ला से बहुत पहले रफ़ी साहब और पंचम दा ने ये गाना बना करके रखा था, लेकिन एक बार रफ़ी साहब के घर पे संजय खान ने ये गाना सुना। गाना क्या, इस गाने की धुन सुनी एंड ही लव्ड इट इंस्टेंटली एंड ही सेड कि मैं जो फिल्म बना रहा हूँ अब्दुल्ला, उसमें इस गाने को मैं डेफिनेटली जगह देना चाहता हूँ। फिर ईयर्स लेटर, क्योंकि इस गाने को बने हुए ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़े बहुत मिनिमल चेंजेस के साथ रफ़ी साहब ने गाना गाया और ऑफकोर्स पंचम दा की कॉम्पोजिशन है और इसको अब्दुल्ला में रखा गया। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स दिस इज, मैंने पूछा चांद से। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहे आगे साथ, और भी किस्से हैं एक एक करके सुनाती रहूँगी। कम राइट बैक।

0: सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

लेट लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार जी के पास ना जनरली हर फिल्म डायरेक्टर जाता था अपनी फिल्म के रशेस दिखाने और उनसे सजेशन भी लेता था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म कलाकार। इसमें थे कुणाल गोस्वामी और श्रीदेवी जी। अच्छा, जब मनोज कुमार जी को ये फिल्म के रशेस दिखाए गए ना प्री लॉन्च से भी पहले, तो मनोज कुमार जी ने इस फिल्म में कुछ चेंजेस बताए कि फिल्म के कैरेक्टर को सिंपथी नहीं मिलेगी अगर वो ऑडियंस को ऐसे दिखेगा, बिकॉज फिल्म में कुणाल गोस्वामी श्रीदेवी के साथ बहुत रफली बिहेव करता है एंड लेटर ऑन पता चलता है ओ ही वॉज डायग्नोज विथ कैंसर। तो मनोज कुमार जी ने ये कहा था कि ये बात पहले ही बता दो, इंटरवल से पहले बता दो, सो दैट ऑडियंस को ये रफ बिहेवियर समझ में आए और वो कैरेक्टर के साथ सिंपथाइज कर पाए। पर ऐसा डायरेक्टर साहब ने किया नहीं और उनका मानना था कि इसी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। ऐसे बड़े सारे किस्से ना मुझे पता करके आने में आपके लिए बहुत मज़ा आती है। सो दैट यहाँ मिल बैठते हैं तीन यार, आप मैं, उस जमाने के गाने और बस उस जमाने की बातें। सो कम राइट बैक।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रफी साहब का ये गाना ओनली ऑन पुरानी जीन्स. मैं हूँ श्रेया. मूवी का नाम है तुमसे अच्छा कौन है. और इस फिल्म की सबसे खास बात बताओ बताओ क्या. अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ. ललिता पवार का डबल रोल था इस फिल्म में. सोचो ना हीरोइन का ना हीरो का, पर ललिता पवार का डबल रोल. सच अ रेयर फिल्म है ना. हाँ जी, तो इसी फिल्म का गाना आपको सुना है हमारे किशोरदा. क्या सुनाने वाले हैं जरा गौर फरमाइए.

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

भाई शर्मिला जी को लेटर ऑन ये गलती लग रही हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि ओ हो, शी लुक्स सो हॉट, शी लुक्स सो सेंसुअस। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ, ये जो गाना है ये है फ्रॉम द फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, जिसमें शर्मिला टैगोर ने बिकिनी पहन के पूरे इंडिया को शॉक कर दिया था। लेटर ऑन इन अ चैट शो विद हर डॉटर इन लॉ यानी करीना कपूर खान, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि उन्होंने उस समय सोचा नहीं और बहुत वे अहेड, यू नो, चीज उन्होंने बहुत पहले कर ली। बट आई वुड से कि क्या हॉट और क्या सेंसुअस वो लगे, और उनसे ज़्यादा खूबसूरत, उनसे ज़्यादा हॉट कोई भी बिकनी में ना कभी लगा और ना कभी लगेगा। तो उनकी इसी फिल्म का गाना एन इवनिंग इन पेरिस का गाना था जो रफ़ी साहब ने गाया। अगला कौन है? अगला है, नहीं बताऊंगी, नहीं सुना दूंगी।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव साहब ने मना किया, जितेंद्र जी ने मना किया, और तो और प्रकाश मेहरा ने भी मना कर दिया। किसी को ये नहीं पता था कि इस फिल्म के इतने सक्सेसफुल सीक्वल्स बनेंगे और आज तक बनते रहेंगे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म द ओरिजिनल डॉन, जिसको लिखने वाले थे सलीम जावेद साहब की जोड़ी। एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड दे वर नॉट एबल टू सेल द स्क्रिप्ट टू एनीवन। जब वो ये स्क्रिप्ट लेकर के गए ना, तो उनको भाई जीतू जी ने मना कर दिया, प्रकाश मेहरा ने मना कर दिया, देव आनंद साहब ने मना कर दिया कि इस स्क्रिप्ट में क्या है, इट इज ऑल अबाउट वन कैरेक्टर जिसका नाम है डॉन। इट वॉज अल्टीमेटली डायरेक्टर चंद्र बैरट एंड प्रोड्यूसर नरिमन ईरानी जिन्होंने स्क्रिप्ट को यू नो परचेज किया उनसे, खरीदा उनसे, और फिर तो डॉन के बारे में क्या ही कहना, डॉन वन, डॉन टू, डॉन थ्री, डॉन फोर, और मुझे लगता है न जाने कितनी डॉन्स बनती रहेंगी। लेकिन द ओरिजिनल इज ऑलवेज द ओरिजिनल, बच्चन साहब एज डॉन ऑलवेज। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज, only on मिर्ची, it's hot।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, it's hot।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आवो श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों पे है जिन्हें एक ही बंदे पे बार बार प्यार आता है। उनके सामने कितनी भी हसीनाएं आ जाए या फिर कितने भी हैंडसम मुंडे आ जाए, उन्हें तो प्यार बस इसी एक बंदे पे बार बार आता है। अनुराधा पौडवाल एंड पंकज उदास जी की आवाज में कौन सा गाना है आप गौर फरमाइए। तब तक मैं जाती हूँ, ख्याल रखो अपना। इन केस यू वांट टू स्पीक विद मी तो वन टू वन चैट हो जाएगी ना हमारी फेसबुक या इंस्टा पे, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे एस एच आर यू वाई श्रेया विद लव। बस डीएम कर देना। गुड नाइट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची, इट्स
1: ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन चद्दर बिछा कर कालीन

या कि एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराजन तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट

0: मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हाँ, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Morning, only on Mirchi. It's hot. Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: टीचर्स के लिए ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी क्या कहती हैं?
2: आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में
1: ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
3: नमस्कार, आज बहुत आई थिंक सौभाग्य का दिन है। हमने एक बीज बोया था बहुत सालों पहले, बहुत सालों तो नहीं, 1.5 साल पहले, और उसका शायद फल आज हमें मिल रहा है कि हमारे सौभाग्य की सिस्टर शिवानी आज हमारे साथ हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सिस्टर शिवानी।
2: शुक्रिया, ओम शांति।
3: सिस्टर, मेरे मन में ना बहुत सारे प्रश्न उथल पुथल करते रहते हैं, तो आज मैं, क्योंकि मौका मिला है, तो मैं विदाउट पुटिंग एनी बैकग्राउंड मैं ऐसे ही पूछने वाला हूँ आपसे। तो पहले ही माफी मांग रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये ऊटपटांग से सवाल है तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा और अपने हिसाब से बताइएगा। सिस्टर, टीचर्स डे पे मैं बहुत सारी चीजें सोचता हूँ, स्कूल में बहुत सारी चीजें होती थी। मुझे आपसे पूछना है कि आप, आज ऐसा मौका मिलता है कि शायद कई लोगों का आप मार्गदर्शन करती हैं, आपके लिए वो कौन सी एक महिला है, इंसान है, जो भी हैं, जिनको अपना गुरु मानते हैं, वो कौन सा गुरु मंत्र उन्होंने दिया था जो आपने हमेशा याद रखा है?
4: हर एक बच्चे की लाइफ में फर्स्ट वुमन विल बी द मदर।
3: बिल्कुल।
4: एंड इस राजयोग मेडिटेशन को सीखना,

0: ज्ञान को समझना मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था।
1: अच्छा।
0: तो मैं काफी उससे दूर दूर रहती थी, मुझे जरूरत नहीं लगती थी उसकी। बट मेरी मदर ने शुरू किया।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने ऑब्वियसली यू नो पेरेंट फिर ऑब्वियसली चाहेगा कि बच्चा भी वो सीखे जिसमें उसका फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट आज से 30 years back, जरूरत ही नहीं लगती थी। लाइफ परफेक्ट थी। अगर आप अकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हो तो आपकी जीवन सेट है, आपको कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रेस वर्ड ही नहीं पता था हमारे को, तो फिर मेडिटेशन की क्या जरूरत। तो द मोर शी वुड पुश मी द मोर आई वुड मूव अवे। बट आई हैव सीन कि वो पर्सिस्टेंस, एंड उन्होंने फिर बोलना बंद कर दिया। सो नाउ आई लर्न्ड यू कैन बी अ टीचर लाइक दैट आल्सो। क्या बोलना बंद कर देते हैं, आप कुछ कहना बंद कर देते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक अच्छी प्योर इंटेंशन रखते हैं ना, तो वो इंटेंशन मैजिकल रिजल्ट लेकर आती है। सो ऑफ कोर्स फिर हम, वंस आई केम टू द ब्रह्मा कुमारीज, आई मेट सो मेनी सिस्टर्स, एवरीवन हैज टॉट मी सो मच। लेकिन जर्नी स्टार्ट करने के लिए तो निमित वही है। सो लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हर फॉर दैट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: डेली रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या गुस्से में भी हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज सकते हैं? आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: ये आपने बहुत खूबसूरत बात बोली कि कभी कभी ना हम बोलना बंद कर देते हैं और शांत हो जाते हैं, कुछ बताते नहीं है अक्सर, लेकिन हम ये जो बोलना बंद करते हैं वो गुस्से में करते हैं कि कोई बोलने का फायदा नहीं है, उसको बोलते हैं सुनते ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। लेकिन आपकी मम्मी ने बोलना बंद किया लेकिन शायद बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजती रही आप तक।
3: वो तो अब समझ में आता है ना, तब ये समझ में नहीं आता था कि बिना बोले भी कुछ हो सकता है, बिना कहे भी अपनी सोच दूसरे तक पहुंचाई जा सकती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वो घर में खाना बनाती थी, तो जो उनकी सोच है वो खाने के थ्रू, भोजन के थ्रू भी हमारे ऊपर असर करती है। तो उन्होंने अपनी ये जर्नी शुरू की एंड मेरे फादर, मेरा ब्रदर, मैं, नोबडी वाज इंटरेस्टेड। लेकिन आज सारे हैं उस जर्नी के ऊपर बिकॉज शी वाज कुकिंग। तो वो खाना बनाते समय जो मन की स्थिति होती है और जो एक प्योर इंटेंशन है बच्चे के लिए, वो सब काम करता है विदाउट सेइंग एनीथिंग।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जैसा अन्न वैसा मन, क्या हमारे खाने का असर हमारे माइंड पर भी पड़ता है?
2: आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में
1: ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
3: खाने के बारे में मैं देखता हूँ कि आप कई बार कई जोर देते हैं और खाने पे बहुत आपका महत्व रहता है कि किस इंटेंशन से बना है, वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन आम जगहों पर, मैं रेस्टोरेंट और होटल्स की बात नहीं कर रहा, बाहर की जगह की बात नहीं कर रहा, घरों की बात कर रहा हूँ। आजकल बहुत बार खाना जब बनता है तो हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, हम कुछ सोच रहे होते हैं या हम शायद मोबाइल देखते वक्त ही खाना बना रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनको क्या कहें कि भाई जब आप ये करें तो क्या स्थिति रहेगा, क्या सोचें आप?
4: उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको ये लगता है कि खाना बनाना जो सामने वाला खाएगा वो उसकी बॉडी के हेल्थ के लिए है।
3: हाँ।
4: तो हम फोन पे बात भी कर सकते हैं, हम टीवी भी दूसरे रूम में ऑन रख सकते हैं, हम फोन पे कुछ सुन भी सकते हैं और हम खाना बना सकते हैं। वो खाना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा क्योंकि हमारे लिए खाना बनाना वॉज अ डूइंग, कुछ करना है, मुझे खाना बनाना है, तो हम परफेक्ट खाना बना सकते हैं। हम परेशान मन से भी, दुखी उदास मन से भी, रोते हुए भी परफेक्ट खाना बना सकते हैं। मतलब वो रेसिपी हमें आती है ना, वो तो आप आधी रात को भी नींद में उठाओगे घर की मदर को तो वो बना लेंगी। एंड दे वर राइट, क्योंकि वो डूइंग का था। लेकिन अब हमें समझ में आता है जो भारत की संस्कृति में हजारों साल से है कि इट इज जैसा अन्न वैसा मन, इट इज नॉट जैसा अन्न वैसा तन।
3: बिल्कुल,
4: है ना। तो हम तो बॉडी के लिए खाना बना रहे थे, तो बॉडी के लिए अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप कुछ भी सोच रहे हैं डजंट मैटर, आपकी रेसिपी परफेक्ट होनी चाहिए और आपकी सब्जी वो परफेक्ट बननी चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: लेकिन अब जब समझ में आता है कि जैसा अन्न वैसा मन, तो दूसरी लाइन ये भी है, जैसा मन वैसा अन्न।
3: अच्छा, जैसा मन वैसा।
4: हाँ, मतलब बनाने वाले का मन,
3: स्थिति जो हो,
4: बनाने वाले का जो मन है, तो बेसिकली एनर्जी वाइब्रेशन की बात हो रही है। सो इवन अगर चलो हम उतना नहीं सोचे, अगर कोई बहुत प्यार से खाना बनाता है ना, जिसको लाइक बहुत अच्छा लगता है किसी के लिए खाना बनाना उसको, तो उसकी वो वाइब्रेशन ऑफ प्यार, वो दैट इंटेंशन, खाने वाला ज्यादा खा जाता है।
3: हाँ, बिल्कुल,
4: है ना, ज्यादा खा जाता है। एक और भी कोई हो सकता है जो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनाएगा पर उसका मन नहीं था खाना बनाने के लिए,
3: तो एक में पेट भर जाता है,
4: बेमन से बनाया हुआ खाना, परफेक्ट रेसिपी फिर भी होगी। तो वो हम एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो हमें तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं अभी ऐसे कि बनाने वाले की सोच, बनाने वाले की मन की स्थिति सीधा अन्न पर असर करती है और वो अन्न खाने वाले के मन पर असर करता है और फिर खाने वाले का मन खाने वाले के तन पर असर करता है। सो इट इज अन्न से मन, फिर मन से तन। हम ये कहते हैं कि भले रेसिपी ठीक ना हो, भले एक सिंपल सी खिचड़ी बना देना, कुछ हमें चार चीजें नहीं चाहिए, लेकिन वो बनाने बहुत अच्छे मन की स्थिति के लिए,
3: खुशी खुशी बनाए,
4: तो हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई है।
3: वाह, क्या बात।
4: क्योंकि हमें पता है चार चीजें खाने से खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश मन से बनाई हुई एक खिचड़ी भी खाई तो उससे खुशी भी मिलेगी और स्वास्थ्य भी मिलेगा। अगर कोई खाना डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड से बनाया है, लेकिन परफेक्ट खाना बनाए, लेकिन उसकी करंट जो है एनर्जी वो डिस्टर्ब है, तो वो बॉडी को भी हेल्थ नहीं दे सकते। चलो मन को तो नहीं सुकून देगी, लेकिन वो शरीर को भी स्वास्थ्य नहीं देगी, क्योंकि जब वो अंदर जा रहा है वो एक एनर्जी के साथ जा रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, आज मेरे साथ ऑफिस में ये हो गया या और कुछ नहीं तो मैं इतनी थकी हुई हूँ, हमेशा मुझे ही सारा काम करना पड़ता है,
3: तो खाने वाले को भी महसूस होगा,
4: खाने वाले के शरीर पर भी असर करेगा। जब हम कहते हैं ना मेजोरिटी ऑफ आर डिजीजेज आर लाइफस्टाइल, तो ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हम तो परफेक्ट डाइट खा रहे हैं, डॉक्टर ने लिखा ये हम बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ हम क्या खा रहे हैं उससे नहीं होगा, कौन बना रहा है, किस मन की स्थिति में बना रहा है, फिर जो खा रहा है वो किस मन की स्थिति में खा रहा है, वो सारे फैक्टर्स मिला के फिर शरीर के हेल्थ बनेंगे।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: HG Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: खाना बनाते और खाते वक्त पीस ऑफ माइंड क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: खाने के बारे में मैं देखता हूँ कि आप कई बार कई जोर देते हैं और खाने पे बहुत आपका महत्व रहता है कि किस इंटेंशन से बना है, वो बहुत जरूरी होता है।
3: तो सिर्फ क्या खा रहे हैं नहीं, क्या खा रहे हैं लेकिन कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, और फिर अगर सब बनाने वाले ने सब परफेक्ट कर लिया लेकिन खाने वाला ही टीवी देख के साथ खाना खा रहा है,
2: वो भी जरूरी।
3: अब उसमें वो चाहे दुनिया की खबरें देख रहा है या कोई सीरियल देख रहा है,
2: क्राइम शो देख रहे हैं,
3: अच्छा कुछ नहीं तो आप एक मैच ही अगर देख रहे हो, ओके, उसमें कोई नेगेटिव नहीं कुछ नहीं, लेकिन आपका माइंड कितना उथल पुथल करता है एक मैच देखते हुए भी, दैट्स नॉट गुड। आप खाना अंदर डाल रहे हैं, इट हैज टू गो विद पीस, शांति। तो इवन अगर आप सोचो हम तो मैच देख रहे हैं, कोई क्राइम नहीं, कोई नेगेटिव, बट उसमें बहुत फ्लक्चुएशन आता है। खाना हमेशा शांति से खाना है, इसलिए बचपन से सीखा था, शुरू करने से पहले रुको, उसको याद करो परमात्मा को, या कोई भी हाई एनर्जी थॉट क्रिएट करो। क्यों थॉट क्रिएट करो हाई, अभी तो खाना खाना है, क्योंकि जब आप हाई एनर्जी थॉट क्रिएट करेंगे आपका माइंड एकदम पावरफुल साइलेंट हो जाएगा, वो हाई एनर्जी थॉट आपके शरीर को मिलेगी, आपका शरीर भी सेटल्ड हो जाएगा, फिर वो हाई एनर्जी थॉट वो अन को मिलेगी, फिर वो अन उस हाई एनर्जी के साथ अंदर जाएगा। तो मन और तन दोनों के लिए क्या खा रहे हैं से ज्यादा कैसे खा रहे हैं और कैसे बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: 100 तारीफों के बीच एक क्रिटिसिज्म ही हमें क्यों याद रह जाता है? आइए इस माइंडसेट को समझें मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: सिस्टर, मेरे साथ कई बार क्या होता है कि मैं लोगों से मिल रहा हूँ और बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं और लेट्स से मैंने एक प्रेजेंटेशन किया, बोलते हैं अरे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और कोई एक उनमें से होगा जो बोलेंगे यार तुम्हारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम यार ये बहुत करते हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, कुछ क्रिटिसाइज उसने कर दिया। अब 90 लोगों ने बहुत अच्छा बोला लेकिन एक ने कुछ गलत बोला। ऐसा क्यों होता है कि जब मैं वापस घर जाता हूँ वो एक चीज मेरे दिमाग में बार बार चलती रहती है और मैं सोचता हूँ यार उसने ऐसा बोल दिया। मैं 90 लोगों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ कि यार 90 लोगों को फर्क पड़ा, अच्छा लगा उनको। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव की तरफ ज्यादा क्यों भागता है?
3: 100 लोग हैं, 90 लोगों ने आपको एक गिफ्ट दिया
2: जी,
3: लेकिन जो वो एक था उसने ऐसा हैमर मारा तो चोट लगी।
2: हाँ।
3: तो चोट लगी तो वो चोट दर्द हो रही है, दर्द को आपने ठीक नहीं किया है।
2: हाँ।
3: अगर आप दर्द को ठीक कर देंगे तो वो हैमर भी भूल जाएगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ चोट लगी है और वो दर्द हो रहा है तो मुझे चोट मारने वाला याद आएगा ना, जितनी देर वो दर्द होगा।

0: वो सिर्फ उस दिन नहीं याद आएगा, वो हफ्ते भी याद आएगा, अगली बार दिखेगा तो भी चोट याद आएगी. इम्पोर्टेंट ये है कि जब वो मिल रही है क्रिटिसिज्म, उसी टाइम अगर हम उसको हील कर लेंगे ना, तो वो घाव नहीं बनेगा. और हम सिर्फ घाव बनने नहीं देते, हम उस घाव को बार बार रिपीट भी करते हैं. तो वो घाव क्या होता है, सिर्फ माइंड में नहीं करते, हम किसी से बात भी करते हैं. हम कहते हैं पता है उसको क्या आता है, कुछ आता तो है नहीं, आके अपना देके चला गया,
1: मैंने ये किया वो ऐसा बोल
0: फिर
1: रहा है।
0: सामने वाला उस पे और आपको एंडोर्स करता है, हाँ वो तो है ही ऐसा, तो हम अपने को और अलाउ करते हैं. ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. हमेशा हमें याद रखना है, सामने वाला जो कह रहा है वो उसका नजरिया है, और उनका नजरिया उनके संस्कारों से बनता है
1: जी.
0: और हर सोल की लंबी जर्नी है, तो अलग अलग संस्कार है. वो रोल कोई भी प्ले कर सकते हैं आपके ऑफिस में, लेट से कोई आपका सीनियर है या कोई आपका जूनियर है, रोल अलग अलग है, लेकिन डिफरेंट जर्नी डिफरेंट संस्कार. तो जब आपको कोई अप्रिसिएशन देना, तब याद रखना कि मेरे बारे में नहीं है, ये इनके प्यारे प्यारे संस्कार हैं जो ऐसा बोल रहे हैं.
1: प्यारे प्यारे,
0: हाँ प्यारे है ना, वो अच्छा दिख रहे हैं, वो अच्छा बोल पा रहे हैं आपको, कि उनके अच्छे संस्कार है ना, इसलिए वो कर पा रहे हैं. और अगर कोई ऑपोजिट देगा, तब भी याद रखना इट्स नॉट अबाउट मी, ये उनका संस्कार है. थोड़ा सा कड़वाहट भरी है मन के अंदर, कोई चोट लगी होगी कभी, इस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं. जिसको अगर किसी को वायरल होता है ना, तो उसको मीठी खीर भी अच्छी नहीं लगती है.
1: बिल्कुल,
0: अगर मेरे पास वो संस्कार है ना, वो चाहे कभी भी बना हो वो संस्कार, तो आप बेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट हो सकते हैं. लेकिन मुझे फिर भी कुछ ना कुछ आपके अंदर गलती दिखाई देगी, नॉट बिकॉज आप गलत हैं, क्योंकि मेरे पास वो संस्कार है. तो प्रैक्टिस निंदा में नहीं करनी है, प्रैक्टिस स्तुति में करनी है.
1: अच्छा,
0: अप्रिसिएशन में करनी है.
1: बिल्कुल.
0: तो पुराने जमाने में वो घड़ी थी ना जो पेंडुलम ऐसे घूमता था,
1: बिल्कुल.
0: तो मेडिटेशन हमें सिखाता है पेंडुलम को बस सेंटर में रखना, जब अप्रिसिएशन मिले तब भी सेंटर में रखना. अगर अप्रिसिएशन में सेंटर में रख लिया, तो क्रिटिसिज्म में सेंटर में रहेगा वो. लेकिन अगर अप्रिसिएशन में वो 60 डिग्रीज इस तरफ गया टू द लेफ्ट, तो वो क्रिटिसिज्म में 60 डिग्रीज टू द राइट जाएगा.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
4: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
5: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
6: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
5: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F-1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
7: Famous in

0: Indian astrologer. Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
1: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
2: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
3: कंडीशंस अप्लाई.
4: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: वैलिडेशन से ज्यादा इनर इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब कोई अप्रिशिएट करता है हमको बड़ा अच्छा लगता है।
3: हाँ, तो फिर आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली ना दूसरों के शब्दों के ऊपर। जो अप्रिशिएट करे उसको प्यार से शुक्रिया दुआएं, लेकिन याद रखना ये उनका संस्कार है। और ऐसे भी हो सकता है कि कोई मन में आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है
2: लेकिन बोल में कर रहा है,
3: शब्दों में कर रहा है, तो वो भी हमें पता नहीं। लेकिन हम कितना किसी की भी वाहवाही लेकर अपने आप को बहुत ज्यादा वो कर लेते हैं। हमें खुद खुद को इवैल्यूएट करना चाहिए।

0: हमें खुद डिटैच्ड होकर अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए कि कैसा था वो प्रेजेंटेशन, या और फिर जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसका आप फीडबैक ले लीजिए। फीडबैक आपके लिए है, क्रिटिसिज्म उनका संस्कार है,
1: वो बहुत जरूरी है, ये इनको सेपरेट करें।
0: लेकिन जब हम वो क्रिटिसाइज करके फीडबैक देते हैं ना,
1: हाँ।
0: तो हम फीडबैक भी नहीं लेते हैं, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म से ही हर्ट होते हैं। तो सपोज मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, वो गिफ्ट बहुत रियली वैल्यूएबल है आपके लिए, लेकिन मेरा देने का तरीका ठीक नहीं था। मैं आपके पास आई और मैंने कहा ये लो, तो वो मैंने दिया इतना गलत तरीके से कि आपने गिफ्ट खोल के ही नहीं देखा।
1: सही बात।
0: दिस इज व्हाट हैपेंस स्पेशली इन एन ऑफिस।
1: यस।
0: यू नो सामने वाला बहुत आपके फायदे के लिए कोई आपको बात कहता है, लेकिन अगर उसका मन परेशान है, अगर कोई कड़वाहट भरी हुई है, तो उसका कहने का तरीका उतना रिस्पेक्टफुल नहीं होगा। तो तरीका उनका है, फीडबैक हमारे लिए है। तो सेपरेट द फीडबैक फ्रॉम द संस्कार ऑफ क्रिटिसिज्म। तो फिर आप फीडबैक को नहीं खोएं, क्योंकि वो मेरी गिफ्ट थी, देने का तरीका उनका संस्कार।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बेटा आर्किड ज्वेलर्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
1: कंडीशंस अप्लाई।
2: निहाल सिंह नु बंगाली कुड़ी नाल किवें होया प्यार?
3: यू बॉयफ्रेंड?
4: नो बॉयफ्रेंड।
3: असेम नो गर्लफ्रेंड।
2: कि निहाल बंगाली कुड़ी दी सच्चाई फड़ पाएगा? वेखो सिंह वर्सेस कौर 2 रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर स्टारिंग गिप्पी गरेवाल शहनाज गिल डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल रवनीत कौर गरेवाल श्रीकांत मोहता एंड महेंद्र सोनी।

0: only on Mirchi, it's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi, it's hot.
2: क्या आप भी नो नहीं बोल पाते? तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए है. आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ.
3: सिस्टर, क्योंकि हम ऑफिस की बात कर रहे थे, एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं. हमारे ऑफिस में एक बहुत सीनियर बंदे हैं और वो मुंह पे हमेशा हाँ बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे जाके बिल्कुल उसका उल्टा. सीनियर बंदे हैं, उनसे बहुत बार फीडबैक उनको दे दिया गया इस बारे में. और शायद कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उनको परे कर सकते हैं, और सारी चीज़ों के बीच में भी बात. ऐसे लोगों से क्या करें? क्योंकि कई बार जब मैं सोचता हूँ कि चलो उनका संस्कार, उनको फॉरगिव कर देते हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, मुझे भी अपना काम करना है, उनके साथ मेरे डिपार्टमेंट को काम करना है. ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए?
4: वो ना नहीं बोल पाते, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं.
3: अच्छा.
4: क्योंकि बहुत लोग ना नहीं बोल पाते हैं और बहुत लोग ना सुन नहीं पाते हैं.
3: हाँ.
4: है ना? कुछ लोग ना सुन के भी ऑफेंड हो जाते हैं.
3: हाँ.
4: कुछ लोग ना इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि वो दूसरे को ऑफेंड नहीं करना चाहते.
3: बिल्कुल.
4: एंड दिस इज अ संस्कार ऑफ सीकिंग वैलिडेशन. अगर मैंने आपको किसी चीज के लिए ना बोला, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने ना बोला. और अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आपके अनुसार मैं अच्छी नहीं हूँ, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है. तो इसीलिए भले मुझे वो ना लगता है लेकिन मैं अच्छी हूँ, ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए. इसके लिए मैं आपको हाँ बोलती हूँ. वो आपके लिए है ही नहीं एक्चुअली, वो मेरी नीड है ऑफ वैलिडेशन. तो ये सामने वाले को पता भी नहीं होता कि ये क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, लेकिन वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हर एक से एक अच्छी वो क्रिएट करना चाहते हैं. और उसमें उनकी गलती नहीं होती है, ये कभी कभी बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग हो गई होती है. मोस्ट केसेस में इट इज अ चाइल्ड.
3: Okay.
4: एक बच्चा है.
3: हाँ.
4: जिसका पेरेंट या
3: हाँ.
4: जिसका टीचर बहुत क्रिटिकल या बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत डिफिकल्ट टू प्लीज. जिसको आप खुशी नहीं कर सकते हो. आप कितना भी परफॉर्म कर लो, आप 99/100 लिया, वो बोलेगा लेकिन
3: हाँ.
4: आपका ये एक नंबर नहीं है. जब बच्चा छोटा होता है ना, उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अभी तक वो सीख कर रहा है कि कब एक दिन
3: कोई अप्रिशिएट
4: वो मेरा पेरेंट या वो मेरा टीचर कहेंगे तो बहुत अच्छे हो. तो वो जो सीकिंग का संस्कार है ना, वो बहुत पुराना होता है. और वो इतना पुराना होता है कि हमको भी नहीं पता हमारा वो संस्कार कैसे बन गया है, लेकिन हम आज भी वो सीकिंग के मूड में हैं कि लोग मुझे कहें कि मैं अच्छी. वो बहुत डीप प्रोग्रामिंग होती है. तो वो अभी नहीं समझेंगे लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि ये उनका संस्कार है.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
0: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8।

कहा जो भी हमने सुना, न हमें इल्म है न तुम्हें है पता, जाने हो कब कहा।

0: जो भी हमने सुना न हमें याद है न तुम्हें पता जाने हो कब कहा लफ्जों से खता
1: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
2: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
6: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: कंडीशंस अप्लाई।
8: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Raj Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: वर्कप्लेस में ओपन कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: सिस्टर, क्योंकि हम ऑफिस की बात कर रहे थे, एक ऑर्गेनाइजेशन जब आप चलाते हैं तो सिर्फ समझने से तो काम नहीं चलता, हमको काम भी करवाना है।
3: आप उनसे ओपनली बोल सकते हैं कि हम तो रेडी है, आप बताओ अगर ये गलत है तो हम अभी छोड़ देते हैं, हम अभी इसको चेंज। गिव द पर्सन दैट थिंग कि आप सेम रहेंगे।

0: दिस वे और दैट वे. अगर आपने हमें अच्छा बोला या राइट बोला तो भी हम ठीक हैं. अगर आपने बोला कि हमने जो गलत किया उसको पूरा बदलना, हम भी ठीक. आप उनको ना, हम रोल को देखते हैं ना, तो हमें बहुत डिफिकल्ट होता है ये करना. ओ ये तो इतने बड़े हैं, इनको हम ऐसे क्यों बात करें. हम रोल को नहीं देखते हैं, हम व्यक्ति को देखते हैं. और हमें दिखता है कि ये छोटा सा बच्चा अभी तक वो घाव लेके चल रहा है, तो बस उसको उस नजरिए से देखकर एक तब ओपनली बोल दो कि आई एम परफेक्टली ओपन, आप बस मुझे बता दो कौन सी गलतियां. तो सामने वाले को शक्ति देनी पड़ेगी कि वो हिम्मत कर सके आपको डिसप्लीज करने के लिए, बाय अश्योरिंग हिम कि हम ऑफेंड नहीं होंगे, हमारी रिस्पेक्ट आपके लिए अभी भी उतनी है, आप हमारी गलतियां निकालोगे तभी भी उतनी ही है, आप हमें गलत कहोगे तो भी उतनी है. ये अश्योरेंस उस बच्चे को नहीं मिली थी. तो जब हमें दूसरों के संस्कार और मन की स्थिति समझ में आती है ना, भले वो हमारे रोल में सीनियर होंगे लेकिन मन अभी भी वो बच्चे का ही है, तो वो मन को अश्योरेंस दे दो कि वी आर एब्सोल्युटली ओपन. कि आप फीडबैक दो, आप गलतियां निकालो और हम आपके साथ ही बैठ के इसको करेक्ट करेंगे. एक बार दो बार, इट्स लाइक किसी को पानी से डर लगता है. तो वो डरता है ना, कब भी कुछ हुआ होगा. उसको बहुत धीरे से पानी के पास लेके जाना पड़ता है, एक नई रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है आत्मा पर कि पानी इज कम्फर्टेबल, लिफ्ट इज कम्फर्टेबल. कभी कुछ हो गया तो लिफ्ट में जाने से डर लगता है, कभी कुछ हुआ तो फ्लाइट में. ऐसे ही करेक्शन देने से डर लगता है क्योंकि मुझे ना नहीं सुना.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
2: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता. ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो, अगर आज तुम्हारा अलार्म 3 बार ऑलरेडी बज चुका है, तुम्हारी चाय ऑलरेडी स्पिल हो चुकी है, एंड ये I-95 ट्रैफिक इज ऑलरेडी कॉलिंग यू, रिलैक्स बॉस, टेक अ डीप ब्रेथ, बिकॉज एज द ग्रेट फिलोसोफर्स नेवर सेड कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू अस एंड 90% ऑफ हाउ वेल वी प्रिटेंड दैट एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज योर गर्ल प्रिसिला विद यू, लेकर आई हूं ऑफिशियली तुम्हारे लिए मिर्ची मॉर्निंग्स, जिसकी अभी अभी शुरुआत हुई है। तो फिलहाल अगर तुम कम्यूट कर रहे हो या फिर किसी मीटिंग को बहुत शिद्दत से सर्वाइव कर चुके हो या फिर प्रिटेंड कर रहे हो कि तुमने सारी ईमेल्स आज के दिन की पढ़ ली है, आई एम हियर टू मिर्चीफाई योर डे। तुम्हारे साथ अगले कुछ घंटों तक रहने वाली हूँ मैं, इसीलिए जल्दी से जाओ, जान पहचान बढ़ा लो, सोशल मीडिया पर भी मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, इंस्टाग्राम और एक्स पर दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप करना है तो 9033647244, दैट्स माई नंबर। एंड अभी आने वाले हैं कुछ मिर्चीदार नंबर्स जस्ट फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे hot।

0: बस तुम रहते हो।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसका है ये तू?
4: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
5: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
6: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ईटस अरेना अटलांटिक सिटी।
5: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकटमास्टर एंड saiusainc.com।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलिन।
9: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
10: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
9: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
11: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
12: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
13: कंडीशंस अप्लाई।
12: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
13: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
12: Wait, they can see us on Sunday?
13: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
10: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
14: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
5: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अफसर भी है।
15: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com।
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
19: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
18: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
19: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
18: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islip.
20: तेरा क्या होगा कालिया?
21: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
20: अब मिर्ची खा।
22: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. और अब चलते हैं थोड़ा सा टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए. रिवाइंड करके पता करते हैं आज का दिन क्यों खास था हिस्ट्री में. Back in 1608, Captain John Smith became the president of the Jamestown colony in Virginia. 1813 में Commander Oliver Hazard Perry beat the British at the Battle of Lake Erie. 1846 में Elias Howe patented the log stitch sewing machine. 1989 में Hungary opened

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
7: अपने घर में तो हर कोई शेयर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
8: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस, अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155.
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
13: Amit Jetli of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
14: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
15: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
16: कंडीशंस अप्लाई।
17: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
18: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
17: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
18: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
17: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
19: मोदक से लेकर लड्डू तक, इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
20: तेरा क्या होगा कालिया?
21: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
20: अब मिर्ची खा।
22: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जो धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
5: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
6: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
7: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
6: Shaadi shopping ka complete destination. Fashion Queen.
7: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
8: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। Buy now and pay later. आरके ज्वेल्स,
9: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
10: Conditions apply.
11: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे। चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन की तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव में जोड़ायो, जेमा
12: 13 सप्टेम्बर रविवार
11: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
13: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
14: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद 0 ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
15: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
16: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
19: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
20: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
19: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
20: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
19: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
21: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
22: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
21: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
23: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
21: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है,
20: एक ही होता है।
21: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब अम्ब्रेला लेकर जाना है कि नहीं जाना है ये पता करने का टाइम आ चुका है इन वेदर अपडेट। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 71 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स मोस्टली क्लाउडी, लेकिन ऑनेस्टली इट्स फीलिंग अ लिटिल बिट लाइक 73 डिग्रीज फारेनहाइट। आज का टेम्परेचर रेंज इज स्विंगिंग बिटवीन 70 एंड 86 डिग्रीज फारेनहाइट, बट द फील्स लाइक टेम्परेचर इज हिटिंग अप टू 87 डिग्रीज फारेनहाइट। एंड हियर इज द प्लॉट ट्विस्ट, वी हैव गॉट 2 मिलीमीटर्स का रेन स्नीकिंग इन अर्ली मॉर्निंग। तो अगर तुम सुबह सुबह जाने वाले हो बाहर किसी काम से, कुछ एरेंड्स रन करने या अपने ऑफिस कम्यूट के लिए, तो यू माइट सी दैट रेन, बट डोंट यू वरी, बाय 3 PM इट्स ब्रेकिंग इनटू पार्टली क्लाउडी स्काइज। और अगर तुम बाहर निकल रहे हो तो लेयर के प्लेयर बनकर ही जाना, साथ में अपना SPF 50++++ लगाना और ढेर सारा पानी पीना। And let me quickly excite you for the next hour because I'm going to give away free tickets to the biggest Bollywood live concert hitting the East Coast. Naam nahi batane wali hu, lekin hint ke liye bol sakti hu ki Deewana Dil Kal Ho Na Ho, is tarah ke kuch gaane wane gaaye unhone. And if you're excited, jaldi se note karo mera Insta ID. Mirchi Pris is my handle name, MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number bhi note karo, 9033 Mirchi is my number, 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: हेलो
1: हेलो मुकेश जी,
0: कौन
1: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
0: नहीं हो पाया भाई?
1: हाँ, वो नहीं हो पाया सर।
0: क्यों नहीं हो पाया
1: सर? वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
0: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजा आ गई क्या है ये?
1: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
0: क्या समझ रहे हो भाई।
1: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
0: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
1: सर? वो
0: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
1: नहीं सर,
0: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
1: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया।
0: क्यों नहीं हो पाया
1: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
0: है।
1: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
0: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
1: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
0: क्या करा दूँ
1: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
0: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
1: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
0: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
1: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया।
0: उसमें
1: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
0: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
1: अच्छा सर,
0: मुझे चाहिए अपनी वापस।
1: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
0: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
1: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
2: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
0: तो जान निकाल दी हमारी।
2: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
0: कुकड़ू कू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
7: अक्टूबर 11th अग्रानी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
8: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
9: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
8: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
11: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
12: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
13: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
14: कंडीशंस अप्लाई।
15: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
16: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
15: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
16: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
17: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
18: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
19: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
18: Wait, they can see us on Sunday?
19: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell

0: Natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
3: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
4: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Yes.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, cancel all your Friday nights ka plan right now. Because if you don't listen to this, then you are going to miss out big time. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings and I am about to make your week. Kal, yani ki Friday 11th September ko, the legendary voice behind Kal Ho Na Ho and Suraj Hua Madhyam, the one and the only Sonu Nigam, is taking the stage live at the Hard Rock Live at Aegis Arena in Atlantic City. It's not just a concert buzz. It's pure emotion, romance and high energy nostalgia. अब तुम्हें अगर इसके टिकट्स जीतने हैं, वो भी कपल टिकट्स, तो तुम्हें सिर्फ एक सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब लिखकर भेजना है. इनमें से कौन सी फिल्म फीचर सोनू निगम्स आइकॉनिक ट्रैक कॉल्ड कल हो ना हो. तुम्हारे ऑप्शन है ए, दिल चाहता है, ऑप्शन बी, कल हो ना हो, एंड ऑप्शन सी, कभी खुशी कभी गम. टेक्स्ट करने के लिए टाइप करो सोनू निगम, उसके बाद अपना पूरा नाम लिखो एंड देन योर करेक्ट आंसर ए बी एंड सी, और उसे भेज दो व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची इज माय नंबर 9033647244, या फिर स्लाइड इनटू माय इंस्टाग्राम डीएम्स एट मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. और टिकट्स जीतने के बाद उसे पिकअप करना होगा एट द हार्ड रॉक अरीना बॉक्स ऑफिस इन अटलांटिक सिटी टुमारो बिफोर द शो. जल्दी जल्दी एंट्रीज भेजो और टिकट्स जीत जाओ. और अभी आने वाले हैं कुछ हॉट हॉट मिर्चीदार बैंगर्स ओनली फॉर यू. मिर्ची मॉर्निंग्स पर दिस इज प्रिसिला विद यू. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
3: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
4: Friday, 11th September, 8:30 PM. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
3: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and saiusainc.com.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
11: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
10: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
12: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
13: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
14: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Izzelin, New Jersey। देसी खाना,
15: देसी शॉपिंग,
14: देसी कल्चर
15: और देसी एंटरटेनमेंट,
14: बस एक ही डेस्टिनेशन,
15: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर, मॉर्गनविल।
16: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
17: इनफिशियंट, वेरी कॉम्प्लेक्स,
18: क्लमजी और
19: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन।
20: डिसजॉइंटेड सॉफ्टवेयर को यूज करना उतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ, अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट, यू कैन रन योर एंटायर बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग से लेके कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग, ऑपरेशंस या HR। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
21: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
22: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
21: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
22: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
21: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
23: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
24: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
25: कंडीशंस अप्लाई।
26: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Alright, stop scrolling right now. अगर अभी तक तुमने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया तो तुम कैसे जीतोगे सोनू निगम के कॉन्सर्ट के कपल पासेस. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस फ्राइडे 11th ऑफ सितंबर को द किंग ऑफ बॉलीवुड रोमांस सोनू निगम का कॉन्सर्ट हो रहा है. ब्रॉट यू बाय साई USA Inc. सोनू निगम इज परफॉर्मिंग लाइव एट द हार्ड रॉक लाइव एट एटिस अरीना इन अटलांटिक सिटी टुमारो. और इसके कपल टिकट्स मैं दे रही हूँ अभी की अभी तुम्हें मिर्ची मॉर्निंग्स पर. तुम्हें सिंपल सा एक काम करना है, तुम्हें फटाफट से मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी फिल्म में सोनू निगम का आइकॉनिक ट्रैक कल होना हो फीचर हुआ है. ऑप्शन ए है दिल चाहता है, ऑप्शन बी है कल होना हो, एंड ऑप्शन सी है कभी खुशी कभी गम. कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए टेक्स्ट करो अभी के अभी सोनू निगम एंड देन उसके बाद अपना पूरा नाम एंड देन योर आंसर ए बी और सी एंड उसे व्हाट्सएप पर भेजो मुझे अभी के अभी 9033 मिर्ची पर. That's 9033647244. या फिर easy peasy DM करो मुझे Instagram पर right away. Mirchi Pris is my handle name. That is MIRCHIPRIS. And winners को मिलने वाले हैं couple tickets for the concert. सही जवाब तो तुम्हें पता ही होगा. Win करने के लिए जल्दी से जल्दी अपने answers भेजो और अभी सुनते रहो Mirchi because आने वाले हैं मर्जीदार bangers. मेरा नाम है Priscilla. सुन रहे हो तो Mirchi Morning. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
7: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। Buy now and pay later. आरके ज्वेल्स,
8: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
0: Conditions apply. मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Time for some AU. सुनो जी, यानी कि गोल्ड रेट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला.
2: राज रोज विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,350 $4,350 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं. डेफिनेटली एंट्री पॉइंट बनता है. जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, $4,350 रेफरेंस पॉइंट मानते हुए, चाहे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी हो, चाहे गोल्ड बार्स खरीदने हो, राज ज्वेल्स डेस्टिनेशन स्टोर. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स की टीम के साथ. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: हिट मी अप ऑन व्हाट्सएप 9033. मिर्ची इज माय नंबर. दैट्स 9033647244. एंड इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. दैट इज MIRCHIPRIS. राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, Mirchi Mornings. पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. And it's time for
2: Mirchi Hour का 3.
1: सबसे पहले बिजनेस टाइकून हर्ष गोयल का शेयर्ड ब्रेकडाउन ऑफ वर्ल्ड लीडर्स सैलरीज. एंड इट टर्न्स आउट सिंगापुर्स प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग टॉप्स द लिस्ट मेकिंग अ वॉपिंग 26 करोड़ रुपीज एनुअली. मीनवाइल इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी अर्न्स अराउंड 20 लाख रुपीज अ ईयर एज गोयल का सेड क्वाइट अ रेंज फॉर एसेंशियली द सेम जॉब डिस्क्रिप्शन. नंबर टू पर इंडिया ओरिजिन पावर कपल अनुराधा एंड विकास सिन्हा डोनेटेड अ मैसिव $20 million टू द यूनिवर्सिटी of North Texas to set up a brand new AI college. Talk about giving back in a big way. And lastly, on the sports front, reigning world champion Sheetal Devi just won her very first individual World Archery Para Series gold medal in the nail-biting shoot of tiebreaker in Ahmedabad. At just 19 years old, she's proving that true champions hit the bullseye no matter what. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 with me, Priscilla. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi. Escabana,
1: buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vispa, la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लगा?
3: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले तीन दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
11: अमित जेटली of Sai USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
12: Friday, 11th September, 8:30 p.m. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
11: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
13: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
11: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
14: कंडीशंस अप्लाई।
15: मोदक से लेकर लड्डू तक, इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
16: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
17: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
16: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
17: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
18: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
19: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
18: Wait, they can see us on Sunday?
19: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
14: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
20: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
21: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
20: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
22: तेरा क्या होगा कालिया?
23: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
22: अब मिर्ची खा।
24: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
3: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
4: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
3: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
5: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
8: जय गुरुदेव. अवसर आवी ने उभो छा आंगणे. चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए. अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
9: 13 सितंबर रविवार
8: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 732-357-8200. जय गुरुदेव.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी.
12: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ के प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग.
13: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर.
12: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा. हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके. तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर.
14: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
15: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
16: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
15: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
16: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
15: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
17: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
18: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
19: कंडीशंस अप्लाई.
20: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
21: बॉलिंग गोज डाउन द ग्राउंड, बॉलिंग गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
20: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
22: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
20: मोरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
23: एक ही होता है.
20: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
24: मिर्ची

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स और मेरे पास आ चुका है राशि जोन पार्ट टू, यानी कि राशि फ्रॉम लीब्रा टू पाइसेस।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, मेटिकुलस वर्क एंड स्ट्रक्चर्ड प्लान्स आर ब्रिंगिंग बिग प्रोफेशनल रिवॉर्ड्स टुडे। डबल चेक दोस स्प्रेडशीट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज वॉट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करें, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
10: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
11: कंडीशंस अप्लाई। हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
12: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
11: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F-1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
13: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
14: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
15: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
14: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
15: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Listener MI, back to back gana sunega.
19: Back to back gana sunega.
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my Mirchi family. This is officially a wrap on Mirchi Mornings today. Lekin, before I let you go conquer your day, I have huge news for all our aspiring medical stars. If you want to build a real career in the US, Ames Education College of Health Sciences is now issuing I-20s for eligible international students who clear the F1 visa requirements. We are talking hands-on Associate of Applied Science degree in hot fields like surgical, MRI, ultrasound, cardiovascular, anesthesia and neurodiagnostic technologies. Plus, तुम्हें साथ में मिलेगा अनपेड क्लिनिकल इंटर्नशिप इन टॉप मेडिकल सेंटर्स फॉर रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब कि फुल ऑन प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी मिलने वाली है साथ साथ में. सो हेड ओवर राइट नाउ टू aimseducation.edu टू गेट स्टार्टेड. स्टडी इन अमेरिका, ट्रेन इन हेल्थ केयर एंड टेक योर करियर फॉरवर्ड. एंड हे, डोंट फॉरगेट टू मीट मी ऑनलाइन. इंस्टाग्राम और एक्स पे मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अंटिल टुमारो, कीप स्माइलिंग, वर्क हार्ड, खाओ पियो ऐश करो एंड रिमेम्बर मिर्ची सुनते रहो बिकॉज इट्स हॉट. एंड दैट्स अ टाटा बाय बाय फ्रॉम प्रिसिला.

0: समय रैना फैंस कृपया ध्यान दें।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड आई एम 110% श्योर इस इंसान का नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो गए होंगे, आपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा दिए होंगे, तो प्लीज सुन भी लो कि क्या ही चर्चा करने वाली हूँ। सो आपको समय का वो कमबैक एक्ट तो याद होगा, स्टिल अलाइव, एंड स्पेशली द मैन आउट देयर जो समय के उस सेट के बाद अपने पापा को आई लव यू बोल रहे थे। वेल, आपके लिए डायरेक्टर हरीश व्यास जो हैं वो एक फिल्म लेकर आ रहे हैं और इसका नाम है हरिओम। नहीं नहीं, नाम पे मत जाइएगा, कोई भक्ति वाली मूवी नहीं है ये, बट इस फिल्म का इमोशनल कोर है द टाइमलेस टग ऑफ वॉर जो फादर सन के इस ओल्डेस्ट राइवलरी में नजर आती है। इनफैक्ट इस कहानी के जरिए एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने की कोशिश भी की गई है कि भाई कैसा होता अगर हम अपने पापा को बता पाते कि भाई हम उनसे कितना प्यार करते हैं एंड वाइस वर्सा। सो द बैक स्टोरी इज दैट इस फिल्म के साथ डायरेक्टर हरीश व्यास अपनी ट्रिलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं। सो उन्होंने अपना फीचर फिल्म डेब्यू किया था विद द मूवी अंग्रेजी में कहते हैं, और इस फिल्म में संजय मिश्रा के साथ साथ पंकज त्रिपाठी, एकावली खन्ना और अंशुमन झा भी नजर आए थे, जहां एक रिलेशनशिप में आई लव यू बोलने की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर किया गया। कई दफा हमने देखा है कि रिलेशनशिप को अगर काफी टाइम हो जाता है तो लोग एक दूसरे को आई लव यू बोलना भूल जाते हैं, ये सोच के कि यार उसको तो समझ में आता ही है क्या है क्या नहीं है। बट एक्चुअली दैट मूवी रिमाइंड्स यू कि प्यार को सिर्फ अज्यूम नहीं किया जा सकता, इट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड। और उसके बाद आई थी उनकी दूसरी फिल्म दैट इज हम भी अकेले एंड तुम भी अकेले, जिसका बैकड्रॉप भी कुछ ऐसा सा ही था। सो इन शॉर्ट, अगर आपको अच्छी स्टोरी टेलिंग पसंद है, अगर आप ऐसे टॉपिक्स को एक्चुअल में एक्नॉलेज करते हैं, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच हरिओम जो रिलीज हो रही है ऑन दी 18th of September, वो भी थिएटर्स में। एंड सीरियसली यार, इट्स हाई टाइम जब हम अच्छे डायरेक्शन, अच्छी कहानी को अप्रिशिएट करना शुरू करें। ये नहीं कि बस बड़े नाम हो मूवी में, बड़ा बजट हो तो हम उसको ही सपोर्ट करेंगे। बाकी तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चे को गुब्बारा काफी और समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी।
2: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
1: लेंस कौन सा लगाया? नहीं
2: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब? नहीं,
2: कल को
1: फोटो खींचे।
2: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
2: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए।
3: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो में।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Amit Jetli of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
10: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
9: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Famous Indian astrologer, Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
14: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
15: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
14: Wait, they can see us on Sunday?
15: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
16: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
17: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
18: कंडीशंस अप्लाई।

0: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। रिजेक्टेड बाई टॉक्सिक, डिलेड बाई स्पाइडरमैन और शुरुआत हुई थी इस फिल्म को लेकर एक बोगस ऑफर के साथ, बट आज इसी मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी है। बात कर रही हूँ हनुमान अंश की। हाँ जी, जो फिल्म तैयार हुई 2 करोड़ के बजट पे, बट आज इस फिल्म ने अबाउट 80 करोड़ तक कमा लिए हैं ऑन द बॉक्स ऑफिस। इसी को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, कितना पावरफुल हो सकता है यार, क्योंकि ये 5th वीकेंड रन चल रहा है इस मूवी का, और ऐसा ही रहा तो इसे 100 करोड़ क्लब में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। माइंड यू, द मूवी रिलीज्ड ऑन द 31st of July. अगर अभी तक आपने नहीं देखी, देन ऑफ कोर्स इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स की वजह से ही देखने चले जाओ कम से कम। भाई, ये नाम को लेकर कितना बवाल होता है ना हमारे यहाँ, लेकिन सब भूल जाते हैं शेक्सपियर अंकल ने बोला है व्हाट्स देयर इन नेम। एक्चुअली क्या हुआ, 4th of September को रिलीज हुई अर्शद वारसी की फिल्म जीवन भीमा योजना, ये तो पहले उसका नाम था, नाम चेंज करके किया गया जीवन या भीमा कौन। सो बेसिकली इस नाम के ऊपर इसलिए कॉन्ट्रोवर्सी हुई क्योंकि CBFC ने बोला कि भाई फिल्म का नाम जो है हमारे प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति बीमा योजना से काफी सिमिलर है, तो इसको तो चेंज किया जाए। सिर्फ उतना ही नहीं, मूवी में कुछ ऑब्सीन विजुअल्स और डायलॉग्स भी हटाए गए। माइंड यू, इट इज अ क्वर्की कॉमेडी जो 1 घंटे 59 मिनट्स के रन टाइम के साथ आई है, जिसमें अर्शद वारसी के अलावा संजीदा शेख और विजय राज जैसे और भी एक्टर्स हैं। हरीश व्यास डायरेक्टोरियल इस फिल्म के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि इसमें ना फादर सन के अल्टीमेट कॉम्बो को दिखाया गया है। हरीश व्यास की इस फिल्म का नाम है ओम का हरी, जिसका ट्रेलर इज आउट, और अगर आपको एक ओवरव्यू लेना है तो प्लीज देखिए ये फिल्म। इट इज अ स्मॉल बजटेड मूवी जिसमें बहुत बड़े बड़े सितारों के नाम नहीं है, बाकी ट्रेलर देख के मैं तो काफी इंप्रेस्ड हूँ टू वॉच द मूवी इन थिएटर्स जो आ रही है 18th of September को। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। सो टू ऑल द समय राणा फैंस आउट देयर, अगर आपने उनके कमबैक वाले एपिसोड को देखने के बाद अपने पापा को आई लव यू बोलने की शुरुआत कर दी थी, then I guess it's high time कि आप ऐसी फिल्मों को भी सपोर्ट करें। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची,
1: गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग, इन्वेस्ट इन प्योर गोल्ड बार्स विद राज जूल्स।
2: वी हैव अ रेडी स्टॉक एट राज जूल्स, बाय गोल्ड बार्स नाउ एट राज जूल्स।
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
4: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
5: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
6: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
3: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए जोहो वन सही है। जोहो वन इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, योर एंटायर बिजनेस। जोहो वन इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, जोहो वन। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/1।
7: गहने खरीदने की सोच

0: का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
1: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
2: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
3: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: इसके आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज मेरे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हैं दीपक जी, कैसे हैं सर?
1: बढ़िया, बताइए।
0: ओके, मुझे तो डर लग रहा है आपके साथ ये गेम खेलने में, पता चला आपने एक बार में ही खत्म कर दिया गेम मेरा।
1: नहीं,
0: मुझे ये बात बोलनी चाहिए आपको, आप छोड़ते ही नहीं, आपके अंदर का फिल्मची जो है ना एकदम बाहर ही आ जाता है। लेट स्टार्ट, देखते हैं आज कैसा होता है।
1: देखते हैं।
0: जी, करीना और शाहिद की लास्ट फिल्म एक साथ,
1: उड़ता पंजाब।
0: उड़ता पंजाब में हॉकी प्लेयर कौन है?
1: ये आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट किस फिल्म में तमिल स्टूडेंट बनी है?
1: टू स्टेट्स, अर्जुन कपूर के साथ आई थी।
0: क्या बात है, टू स्टेट्स में मेल लीड कौन है?
1: अर्जुन कपूर।
0: अर्जुन कपूर की फिल्म जिसमें वो हाउस हस्बैंड बने हैं,
1: की एंड का
0: में किया साहनी का रोल किसने प्ले किया है?
1: करीना कपूर।
0: करीना कपूर किस फिल्म में भैया जी की सेक्रेटरी बनी है?
1: टशन।
0: बिल्कुल टशन। ओके, आगे पूछती हूँ, फिल्म में भैया जी का रोल किसने प्ले किया है?
1: अक्षय कुमार।
0: नहीं सर, यहाँ पे आप गलत हो गए, यहाँ पे चेन ब्रेक करूंगी मैं।
1: करो।
0: बट इतना अच्छा जो गेम यहाँ तक पहुँचाया है उसके लिए ये टैग तो बनता है।
2: मिर्ची फिल्म जी।
0: हाँ जी, तो आप फिलहाल जो मुझे सुन रहे हैं, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, गेम कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर डीएम कीजिए, बाकी आई टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
5: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
4: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
5: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
7: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
8: कंडीशंस अप्लाई।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
11: किसका है ये तो?
12: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
13: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
14: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
13: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट Ticketmaster एंड saiusainc.com.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड यस लाइक एवरी डे इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्म जी। सो द ड्रिफ्ट

0: मिर्ची पे खेला हो बे।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एक्सक्यूज मी, यहाँ इस खेल में हम मिर्ची फिलमची ढूंढते हैं, आप अपने दिमाग के घोड़े इधर उधर ना दौड़ाएं। हाय, सो बेसिकली इट्स टाइम टू फाइंड अनदर मिर्ची फिलमची। इस गेम की शुरुआत हमने की थी दीपक जी के साथ और अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं हार्दिक। तो हार्दिक कैसे हो आप?
3: मस्त हूँ, आप बताओ।
0: अरे वाह, मस्त सुन के मैं भी मस्त हूँ अब तो। द क्वेश्चन वॉज की फिल्म टशन में भैया जी का रोल किसने प्ले किया है?
3: अनिल कपूर।
0: वेरी नाइस। अनिल कपूर की फिल्म जो टोटली क्रूज पे शूट की गई है?
3: दिल धड़कने दो।
0: वाओ, दिल धड़कने दो में रणवीर सिंह की बहन कौन बनी है?
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा का आइटम सॉन्ग किस मूवी में है जिसमें वो रख पॉकेट में घोड़ा दे घोड़े को लगाम बोलती है?
3: रामलीला।
0: वेरी नाइस। गोलियों की रासलीला रामलीला में लीला का रोल किसने प्ले किया है?
3: दीपिका।
0: दीपिका किस फिल्म में झूमर के नीचे मरती है?
3: ओम शांति ओम।
0: बहुत बढ़िया। ओम शांति ओम में दीपिका को झूमर के नीचे मारता कौन है?
3: अर्जुन रामपाल अपने मेजर इकबाल।
0: मेरा अगला सवाल यही है, अर्जुन रामपाल ISI एजेंट मेजर इकबाल किस फिल्म में बने?
3: धुरंधर।
0: धुरंधर में हमजा को अंडरकवर एजेंट कौन बनाता है?
3: आर माधवन।
0: बहुत बढ़िया। आर माधवन को फोटोग्राफी का शौक किस फिल्म में?
3: थ्री इडियट्स ऑफ कोर्स।
0: थ्री इडियट्स में रैंचो कौन है?
3: आमिर खान।
0: आमिर खान किस फिल्म में पूरे इंडिया में भागते रहते हैं?
3: पूरे इंडिया में भागते रहते हैं,
0: हाँ जी,
3: लाल सिंह चड्ढा।
0: बहुत ही उम्दा। इसी के साथ आपको भी ये टैग बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: वैसे पूरी दुनिया एक चीज से भागती है, वो है शादी, और इस चीज से आमिर खान तो बिल्कुल नहीं भागते यार। तभी तो 5th of July को चौथी बार परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। विशिंग हिम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस अहेड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑन।
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन।

0: वो तो बीते जमाने की बात है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय, मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब हिंदी सिनेमा में अगर कोई बड़े बजट की फिल्म होती थी तो ही वो बड़ी कमाई कर पाती थी। बट थैंकफुली गॉन आर द डेज, क्योंकि अब रीसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि स्मॉल बजटेड फिल्म में भी जो वेल रिटन हो, यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ हो, हैव मैनेज टू कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस एंड हेंस उनका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी अमेजिंग रहा है। एंड यस, आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं लो बजटेड बॉक्स ऑफिस पे अच्छी कमाई करने वाली फिल्मों की बात कर रही हूँ। वेल, इसमें सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म स्त्री, विच वॉज अ हॉरर कॉमेडी डायरेक्टेड बाय अमर कौशिक, स्टारिंग राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी जैसे अमेजिंग एक्टर्स। बाकी इट वॉज द फर्स्ट मूवी इन द कैटेगरी ऑफ हॉरर कॉमेडी जो 18 दिनों में 100 करोड़ क्लब में पहुंच गई थी। हां जी, एंड यू वोंट बिलीव, इस फिल्म को बनाने में सिर्फ 20 करोड़ लगे थे। इम्प्रेसिव राइट? अब भैया, यूनिक स्टोरी लाइन हो, वैसे ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी, हाँ, एंड उसके साथ फाइन परफॉर्मेंसेस हो तो जनता तो अपना प्यार देगी ही। खैर, मेरी इस लिस्ट में और भी कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, इट्स हॉट।
3: हेलो
4: हेलो मुकेश जी,
3: कौन?
4: मुकेश जी, मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली, थोड़ा
3: नहीं हो पाया भाई।
4: हाँ, वो नहीं हो पाया सर।
3: हाँ, नहीं हो पाया
4: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
3: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
4: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
3: क्या समझ रहे हो भाई।
4: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
3: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
4: सर, वो
3: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
4: नहीं सर,
3: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
4: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया।
3: क्यों नहीं हो पाया
4: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
3: है।
4: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
3: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
4: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
3: क्या करा दू
4: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
3: कैसी FIR, दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
4: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
3: क्या गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
4: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया,
3: उसमें
4: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
3: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
4: अच्छा सर,
3: मुझे चाहिए अपनी वापस।
4: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
3: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
4: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया है मुर्गा।
5: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
3: तो जान निकाल दी हमारी।
5: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्क।

0: ऐसा ही सब कुछ नहीं होता है बाबू मोशाय।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: भाई। पैसों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब हिंदी सिनेमा में अगर हम देखें तो जिस फिल्म में ज्यादा पैसे लगा करते थे वही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया करती थी। हाँ, ये एक पैटर्न चलता आ रहा था, बट थैंकफुली इन द रीसेंट टाइम्स थिंग्स हैव चेंज्ड क्योंकि वेल रिटन यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरीज को तवज्जो मिलने लगी और ऑडियंस का इंटरेस्ट कॉन्टेंट पे चला गया। और इसीलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग बॉक्स ऑफिस परफॉर्मर लो बजटेड फिल्मों की बात कर रही हूँ। लिस्ट में नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म बधाई हो, जो साल 2018 में आई थी, विच वॉज अ कॉमेडी ड्रामा डायरेक्टेड बाय अमित शर्मा, स्टारिंग आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव, सुरेखा सिकरी और शिवा चड्ढा जैसे सुपर परफॉर्मर्स। प्लॉटलाइन कुछ ऐसा सा है कि मम्मी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी वजह से बच्चे की लव लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। भाई साहब, एक तो अमेजिंग परफॉर्मेंस, ऊपर से जो डायलॉग्स हैं, ओहो चुम्मेश्वरी। बाकी टॉकिंग अबाउट द बजट ऑफ द फिल्म, ये 30 करोड़ के बजट में बनी थी बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 132.65 crores, हेंस प्रूव्ड दैट कंटेंट इज द बाप। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स विद फीमेल लीड जो 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बनी। आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म राजी, जो साल 2018 में आई थी, मेघना गुलजार डायरेक्टोरियल, स्टारिंग आलिया भट्ट, विकी कौशल, अमृता खनवलकर, जयदीप अहलावत, सोनी रजदान जैसे अमेजिंग एक्टर्स। भाई एक तो प्लॉट इस मूवी का, ऊपर से हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंसेस, एंड टॉकिंग अबाउट द बजट ऑफ द फिल्म, ये 40 करोड़ में बनी थी बट इसने कमाई की 158.77 crores। ओ हो, इसलिए बोलते हैं भाई बजट कितना बड़ा है वो फिल्म को एक परफॉर्मर नहीं बनाता, rather it is the content. Khair, meri is list mein aur bhi to filmon ki baat baki hai, but all of that in a while. Tab tak ke liye you enjoy the songs right here on Mirchi with this ladki badi filmy, it's hot.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
6: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
5: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
7: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. presents सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव अटलांटिक सिटी। बुक नाउ एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।
8: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
9: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 days pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
8: Wait, they can see us on Sunday?
9: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
10: गहने खरीदने की सोच

0: आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
1: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस,
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Oh, no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Yeah. Meethi Mirchi.
10: Brighten up your day, we will find a way.
9: On Meethi Mirchi, aha.
11: The whole thing is that ki bhaiya sabse bada hai content.
12: Shruti.
13: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
11: अब देखो, एक टाइम था जब हिंदी सिनेमा में फिल्में ऐसी बनती थी जिनका बजट अगर बड़ा हुआ तो वो बॉक्स ऑफिस पे भी बड़ा परफॉर्म करते थे। बट नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, क्योंकि अभी कंटेंट और परफॉर्मेंस इन दोनों का अमैलगमेशन अगर मस्त हो जाए तो ऑडियंस खुश हो जाती है और बॉक्स ऑफिस नंबर्स अपने आप बढ़ जाते हैं। विलास पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही लो बजटेड हाई परफॉर्मिंग फिल्मों की बात कर रही हूँ। जिस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म अंधाधुन, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी, अ ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन एंड इट स्टार्ड आयुष्मान खुराना, श्रीराम राघवन हिमसेल्फ, तबू, राधिका आप्टे एंड मानव विज जैसे अमेजिंग एक्टर्स। बट सोने पे सुहागा वाली बात ये हो गई कि 25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने एक तो तबू और आयुष्मान खुराना को एकदम डिफरेंट रोल्स में, डिफरेंट अवतार में हमें दिखाया, वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने 72.37 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली। मूविंग ऑन, नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म हिंदी मीडियम, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी, अ कॉमेडी ड्रामा डायरेक्टेड बाय साकेत चौधरी, स्टारिंग इरफान खान, सबा कमर, दीपक डोबरियाल और अमृता सिंह जैसे अमेजिंग एक्टर्स। सीरियसली, ये कॉमेडी ड्रामा जब आई थी, इट वॉज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द मिड्स ऑफ कमर्शियल पॉट बॉयलर्स, जिनकी कहानियां बिल्कुल एक सी ही रिपीटेटिव। इनफैक्ट अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो 23 करोड़ के बजट में बनी थी ये फिल्म, विच पीपल फाउंड हिलेरियसली रिलेटेबल एंड इट मैनेज्ड टू अर्न मोर देन 70 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस। इसीलिए, बस इसीलिए मैं इतनी देर से कह रही हूं कि भैया द होल थिंग इज दैट सबसे बड़ा है कॉन्टेंट। खैर, अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कुछ एडिशन करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे मिलूंगी आपको। इन द मीन टाइम एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
14: 20 मिनट्स ऑफ बैक टू बैक म्यूजिक ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 92.7 FM एंड 103.3 FM HD2। इट्स

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
4: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Kiska
7: hai ye to? Ek awaaz jisne romance ko ek nayi pehchan di, ek legend jiski melodies pichle 3 dashkon se har Hindustani ke dil mein dhadakti hain.
8: Amit Jetley of Sai USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
9: Friday, 11th September, 8:30 p.m. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
8: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
10: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
11: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
12: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
13: कंडीशंस अप्लाई।
14: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। रिजेक्टेड बाई टॉक्सिक, डिलेड बाई स्पाइडरमैन, और शुरुआत हुई थी इस फिल्म को लेकर एक बोगस ऑफर के साथ, बट आज इसी मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी है। बात कर रही हूँ हनुमान अंश की। हांजी, जो फिल्म तैयार हुई 2 करोड़ के बजट पे, बट आज इस फिल्म ने अबाउट 80 करोड़ तक कमा लिए हैं ऑन द बॉक्स ऑफिस। इसी को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, कितना पावरफुल हो सकता है यार, क्योंकि ये 5th वीकेंड रन चल रहा है इस मूवी का, और ऐसा ही रहा तो इसे 100 करोड़ क्लब में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। माइंड यू, द मूवी रिलीज्ड ऑन द 31st of July। अगर अभी तक आपने नहीं देखी, देन ऑफ कोर्स इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स की वजह से ही देखने चले जाओ कम से कम। भाई, ये नाम को लेकर कितना बवाल होता है ना हमारे यहाँ, लेकिन सब भूल जाते हैं शेक्सपियर अंकल ने बोला है व्हाट्स देयर इन नेम। एक्चुअली क्या हुआ, 4th of September को रिलीज हुई अर्शद वारसी की फिल्म जीवन बीमा योजना। ओ सॉरी, ये तो पहले उसका नाम था, नाम चेंज करके किया गया जीवन या बीमा कौन। सो बेसिकली इस नाम के ऊपर इसलिए कॉन्ट्रोवर्सी हुई क्योंकि CBFC ने बोला कि भाई फिल्म का नाम जो है हमारे प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति बीमा योजना से काफी सिमिलर है, तो इसको तो चेंज किया जाए। सिर्फ उतना ही नहीं, मूवी में कुछ ऑब्सीन विजुअल्स और डायलॉग्स भी हटाए गए। माइंड यू, इट इज अ क्वर्की कॉमेडी जो 1 घंटे 59 मिनट्स के रन टाइम के साथ आई है, जिसमें अर्शद वारसी के अलावा संजीदा शेख और विजय राज जैसे और भी एक्टर्स हैं। हरीश व्यास डायरेक्टोरियल इस फिल्म के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि इसमें ना फादर सन के अल्टीमेट कॉम्बो को दिखाया गया है। हरीश व्यास की इस फिल्म का नाम है ओम का हरी, जिसका ट्रेलर इज आउट, और अगर आपको एक ओवरव्यू लेना है तो प्लीज देखिए ये फिल्म। इट इज अ स्मॉल बजटेड मूवी जिसमें बहुत बड़े बड़े सितारों के नाम नहीं है, बाकी ट्रेलर देख के मैं तो काफी इंप्रेस्ड हूँ टू वॉच द मूवी इन थिएटर्स जो आ रही है 18th of September को। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। सो टू ऑल द समय राणा फैंस आउट देयर, अगर आपने उनके कमबैक वाले एपिसोड को देखने के बाद अपने पापा को आई लव यू बोलने की शुरुआत कर दी थी, then I guess it's high time कि आप ऐसी फिल्मों को भी सपोर्ट करें। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची,
15: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्च।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक बावर्ची होता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। और सबने ना कभी कुछ ना कुछ तो कुक किया होता है, फिर चाहे वो हॉस्टल में तुम्हारे 2 मिनट नूडल्स हो या फिर चाय। तो हम सब कहीं ना कहीं तो बावर्ची होते ही हैं। इसी टाइटल को रखकर ऋषिकेश दा ने उस जमाने की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई विद राजेश खन्ना एस बावर्ची एंड जया बच्चन जी। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, एके हंगल साहब, असरानी साहब, दुर्गा खोटे। तो आज ना इसी मूवी की कहानियां बताऊंगी जो कि मैं कुक नहीं करके आई हूँ, वो सच में ये खट्टी मीठी किस्से एक्चुअली में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म हुए थे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कास्ट और क्रेडिट से। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
3: मेरी बात है। चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
7: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
6: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
8: मोदक से लेकर लड्डू तक, इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ

0: राजभोग के यहाँ से राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
8: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
9: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
10: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
7: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
12: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
13: कंडीशंस अप्लाई.
14: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.

इससे पहले तक किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना ऋषिकेश दा, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी जी की फिल्म बावर्ची की बात हो रही है। आपको पता है इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था कि कास्ट और क्रेडिट को ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जैसे क्रेडिट दिए जाते हैं ना, ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें क्रेडिट्स फिल्म के शुरुआत में नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा, और अगर नहीं देखी है या फिर बहुत पहले देखी थी तो मैं याद दिलाऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे। चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
4: 13 सितंबर रविवार
3: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
5: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
6: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
5: Wait, they can see us on Sunday?
6: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
9: की जसनीत नू निहाल सिंह वापस पिंड लेके आ पाएगा?
10: जे तू जसनीत नू वापस ना ना लेके आया पुत, तो मेरा भी मरीदा मुंह देखेगा।
9: कि पिंड वाले जसनीत नू वापस पिंड देख पाएंगे? वेखो सिंह वर्सेस कौर 2 रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर, स्टारिंग गिप्पी गरेवाल, शहनाज गिल, डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह, प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल, रवनीत कौर गरेवाल, श्रीकांत मोहता एंड महेंद्र सोनी।
11: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
12: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
13: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अफसर भी है।
14: संडे सितंबर 27th 4 PM, जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर, ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com।
15: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
16: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
17: कंडीशंस अप्लाई।
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
18: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये यूनिक आइडिया फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश दा का था। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। राजेश खन्ना थे, जया बच्चन थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रेडिट्स नहीं दिए गए, यानी देयर वर नो टाइटल कार्ड्स। तो फिर क्या किया गया था? इसमें अमिताभ बच्चन जी के वॉइस ओवर ने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये यूनिक आइडिया पहली बार किसी फिल्म में देखा गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से क्यों उन्होंने टाइम निकाला, ये अभी बताऊंगी श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज

0: पहले हिस्से में शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है, हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज, समझे कि नहीं समझे, सही है
1: साथ जीतूराज only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Food?
5: Yes.
4: Shopping?
5: Yes.
4: Entertainment?
5: Double yes.
4: Or health fair?
5: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
6: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
7: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sono Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
8: Wow! Yehi to hai mera dream lehenga.
9: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. India Bridal Store.
8: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
9: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
8: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
10: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
11: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
12: कंडीशंस अप्लाई। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
16: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टाइटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज द फिनोमिनल ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने ये सोचा भी और अपनी फिल्म बावर्ची में किया भी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही थी द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची की, ऋषिकेश दा की डायरेक्टेड, जिसमें बावर्ची बने थे राजेश खन्ना, उनकी लव इंटरेस्ट बनी थी जया बच्चन जी। और इस फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कास्ट एंड क्रू के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा ऋषिकेश दा ने, एंड दैट वाज कि हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया गया। अब अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, तो ऋषिकेश दा उनसे ये फेवर मांगने में थोड़ा कतरा रहे थे। उन्होंने जया जी से वाइल्ड शूटिंग द फिल्म ऐसे ही मुस्कुरा के बात बात में कह दिया कि काश अमित ये काम कर पाता। ये बात जया जी ने घर जा करके अमित जी को डिनर पे बताई। अमिताभ बच्चन और जया जी के लिए ऋषिकेश दा फादरली फिगर थे, हमेशा से एक बड़े भाई थे। जैसे ही अमित जी ने ये बात सुनी, वो ऋषिकेश दा के घर पहुंच गए और उनसे नाराज होके कहा, दादा ये बात आप मुझसे आके नहीं कह सकते थे, आपको जया की जरूरत पड़ी इसके लिए। ऋषिकेश दा ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। पुरानी जीन्स पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो बस वापस आओ श्रेया के साथ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना ये दोनों डेटिंग फेज में थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बावर्ची की थोड़ी देर पहले। तो इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया जी ना एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, वो प्यार में धीरे धीरे पड़ रहे थे। तो क्या होता था कि अमित जी जया जी को

मिलने फिल्म के सेट पे जाते थे। अब सेट पे तो उनको उस टाइम के सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना भी मिलते थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन थोड़े अखरते थे। अच्छा, काका उस टाइम पे अपने स्टारडम के खुमार में भी थे। अमिताभ बच्चन बिजी जरूर थे, उनके पास फिल्में बहुत थीं, लेकिन जनरली उनकी फिल्में इतनी खास चल नहीं रही थी। ऐसे में काका उनको ताने मारा करते थे, रिमार्क्स पास किया करते थे। क्या अमिताभ बच्चन को गुस्सा आया या फिर उनकी तब की गर्लफ्रेंड जया जी को, बताऊंगी थोड़े से गानों के बाद। मुझे बहुत मजा आता है आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में, क्योंकि फिर मुझे यकीन होता है कि आप वापस यहाँ होंगे। सो कम राइट बैक पुरानी जींस पर, मैं हूँ श्रेया।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virgua, la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ जी, नहीं पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की.
1: हाँ
2: सर, वो भी हो नहीं पाई है. वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो
1: एक. क्या समझ रहे हो भाई?
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डल रहा है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दें.
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे. आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: क्या गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया, तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Amit Jetli of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
8: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से. राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना.
12: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार.
13: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है.
14: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक. बुक योर सीट्स एट प्रयोग थिएटर.com.
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
15: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन.
17: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर.

0: आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
1: कंडीशंस अप्लाई. हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है.
2: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस.
1: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F-1 स्टूडेंट वीजा. विजिट aimseducation.edu. योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स.
3: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

काका बोले तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारे ताने मारते थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है ऋषिकेश दास द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। तो मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी बात? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एंड जया जी वर डेटिंग। वो एक दूसरे को मिल रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे थे। तो अमित जी के पास बड़ी सारी फिल्में थी, वो बिजी भी थे, लेकिन उनकी फिल्में इतनी चल नहीं रही थी। ऐसे में द सुपर सक्सेसफुल राजेश खन्ना जब उनको सेट पे देखते तो ऑफकोर्स उन्हें वो कॉम्पिटिशन लगते और वो उनको बहुत सारे ताने मारते। अमिताभ बच्चन भी सुन लेते, जया बच्चन भी सुन लेती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काका ने एक बहुत ही खराब शब्द कहा। इस शब्द को सुन करके जया जी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने काका को जाकर के उनके कान में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं कहा। वो शब्द क्या था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
3: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
2: Wait, they can see us on Sunday?
3: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
4: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस
5: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस
7: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग
8: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 Edison Wick शॉपिंग मॉल के अंदर
7: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को बेहतर समझ सके तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर
9: गहने खरीदने की सोच रहे हैं आरके ज्वेल्स चलिए आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर बाय नाउ एंड पे लेटर आरके ज्वेल्स
10: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
11: कंडीशंस अप्लाई
12: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

0: मनहूस, ये कह के बुलाया था काका ने अमिताभ बच्चन जी को। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है बावर्ची फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश दा, फिल्म के मेन लीड राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन जया बच्चन। ये वो टाइम था जब जया बच्चन जया बहादुरी थी और अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्में कर रहे थे लेकिन उनकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, वो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी एक के बाद एक। ये वो टाइम था जब जया जी और अमिताभ बच्चन प्यार करने लगे थे एक दूसरे से, तो अमित जी ना बावर्ची के सेट पे उनसे मिलने जाते थे और हाँ ऋषिकेश दा तो उनके दोस्त ही थे। ऐसे में राजेश खन्ना को बहुत अखड़ते थे। राजेश खन्ना चलते फिरते अमिताभ बच्चन को कोई ना कोई ताना मार ही देते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब जया जी के सब्र का बांध टूट गया और वो था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कहा, मनहूस, तुम मनहूस हो, जिस भी फिल्म में जाते हो वो फ्लॉप हो जाती है। ये बात जया जी के दिल पे सीधे जाके चुभी। उनको इतना गुस्सा आया कि अमित जी उन्हें चाय पे वापस बैठाते रहे, बैठ जाओ छोड़ो जाने दो। जया जी गुस्से में उठी, राजेश खन्ना के पास गई और उनके कान में कहा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी कि ये आदमी क्या बनेगा और आप क्या रह जाएंगे। इस एक लाइन के बाद वो वापस आके चाय पीने लगी एंड आफ्टर दिस काका ने अमिताभ बच्चन को कभी ताना नहीं मारा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और भी किस्से हैं उस जमाने के, तो गाने सुन करके यहीं वापस आने।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: किसका है ये तो?
5: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
6: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
7: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
6: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट Ticketmaster एंड saiusainc.com।
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
1: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
11: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। Buy now and pay later. आरके ज्वेल्स,
12: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: Conditions apply.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

अच्छा एक और चीज में ये फिल्म बावर्ची खास थी, पुरानी जीन्स पर। हाय मेरा नाम है श्रेया और आज मूवी बावर्ची की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना, जया बच्चन एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। राजेश खन्ना यानी काका उस टाइम पे ना सुपरस्टार थे, बल्कि कहा जाता है कि इंडिया के वो फर्स्ट सुपरस्टार थे। उनके साथ हर हीरोइन ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मुमताज जी हो, आशा पारेख हो, जीना तमान हो, तनुजा जी हो, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक हीरोइन थी जो उस टाइम पे अपने स्टारडम के पीक पे थी, पर काका से थोड़ी दूरी बना के चलती थी। उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज इज लव इंटरेस्ट सिर्फ

एक ही फिल्म में काम किया और वो थी बावर्ची। जया जी और राजेश खन्ना की ये रोमांटिकली पेयर अप होने वाली पहली और आखिरी फिल्म थी। इसीलिए है ना ये यूनिक फिल्म, क्योंकि ऋषिकेश दा इन दोनों को एक साथ ले आए थे इस पिक्चर में। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया। वापस आओ, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी हैं उस जमाने की।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक ऐसी फिल्म जिसने हमें जम करके हंसाया और बहुत सारे सीन्स में इमोशनल भी कर दिया। आज उसी की बात हो रही है, बावर्ची। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही हूँ ऋषिकेश दा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। अच्छा, जो रेट्रो फैंस हैं उन्होंने डेफिनेटली ये फिल्म देखी होगी और जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में राजेश खन्ना बावर्ची बने थे। एक जॉइंट फैमिली के लिए खाना बनाया करते थे, पर अगर जब आप फिल्म देखोगे ना तो वो खाने से ज्यादा वो पूरी फैमिली का ख्याल रखते थे। सबके सीक्रेट्स भी इसी बावर्ची के पास होते हैं। जब ऋषिकेश दा ने ये अलग हट करके कैरेक्टर एकदम अलग हट करके फिल्म काका को सुनाई ना, उन्हें बड़ा पसंद आया। सबसे ज्यादा एक्साइट उनको किया था बावर्ची की कॉस्ट्यूम, हाफ पैंट्स, एक शर्ट और सर पे टोपी। अब ये जो टोपी थी ना, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस टोपी को दो वजहों से पहना था राजेश खन्ना ने, एंड वो दो रीजंस क्या थे? आहा, अब तो आप मुझे जान गए हो, ऐसे कहां बताती हूँ मैं आपको। ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में श्रेया को तो बड़ा मजा आता है, तो गाने सुन करके जल्दी से वापस आओ, फिर बताती हूँ इस टोपी के पीछे की कहानी। ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखार दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं।
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे,
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे कपड़े
1: कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
0: हैं। सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी
0: दिखाइए,
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
7: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
6: Wait, they can see us on Sunday?
7: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
8: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
9: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
10: कंडीशंस अप्लाई। हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
11: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीसिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
10: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
12: किसका है ये
13: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
14: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. proudly presents सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
15: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
14: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट Ticketmaster एंड saiusainc.com।
16: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
17: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
16: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
18: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
18: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
18: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दा जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक।

सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने हैं वो, जिसे उन्होंने एक सेकंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा? कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आऊं।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग। इन्वेस्ट इन प्योर

0: gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
3: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
4: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्च।

0: Prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
1: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
2: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
3: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। Buy now and pay later. आरके ज्वेल्स,
4: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: Conditions apply.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: your chi. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ऋषिकेश दाना बंगाली फिल्मों से बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे और इसीलिए उनकी कई सारी फिल्में बंगाली फिल्म से ही इंस्पायर थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। बावर्ची की बात हो रही है। ऋषिकेश दा ने बनाई थी, राजेश खन्ना और जया बच्चन थी विद अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। ए के हंगल थे, असरानी साहब थे, दुर्गा खोटे थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बावर्ची भी एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर थी और इसका नाम था गोलपो होलियो सोटी। ये फिल्म तपन सिन्हा ने बनाई थी। बनी तो ये 1966 में थी, लेकिन जब ये ऋषिकेश मुखर्जी ने देखी थी उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ हिंदी में बनाएंगे। पुरानी जीन्स पर आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी, तो श्रेया के साथ वापस आओ।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतुराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतुराज, only on Mirchi, it's hot।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
8: दिस सितंबर 12th एंड 13th जॉइन अस एट द इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर एट श्री कृष्ण मंदिर मॉर्गनविल।
9: एंजॉय डिलीशियस इंडियन फूड, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
10: For vendors and information visit www.krishnatemple.org।
11: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। Buy now and pay later. आरके ज्वेल्स,
12: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
13: Conditions apply.
14: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

दोस्तों, थ्रो बैक थर्सडे पे आज एक छोटी सी याद। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और थ्रो बैक टू द टाइम जब यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि गाना हम स्किप कर सकते थे। जी हाँ, याद है वो वक्त जब गाना सिर्फ सुनना नहीं होता था, गाने के साथ थोड़ा जीना भी होता था। पहले इंट्रो आता था, फिर धीरे धीरे धुन बिल्डअप होती थी, फिर अंतरा, और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब पूरा गाना खत्म हो गया। और जी हाँ, आज वही गाने कभी कभी छोटी से एक रील मोमेंट मिलते हैं, कभी एक लाइन, कभी एक हुक, और कभी बस वही रिपीट पे चलती रहती है। रील ना हमें उस गाने का एक ही हिस्सा याद दिलाता है, पर रेडियो पे जब हम ये गाने पहले सुनते थे तो पूरा गाना फील करवा देता था। तो जैसे कभी कोई गाना पूरा याद होता था, अब उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही याद रह जाता है। पर यार जब भी हम वापस जाके ऐसे किसी गाने को पूरा सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी डायरी खुल गई हो। हर लाइन, हर म्यूजिक पीस कुछ ना कुछ याद तो जरूर दिला देता है। तो चलिए दोस्तों, रेडियो पे उसी एहसास को वापस लाते हैं, बिना स्किप किए इस गाने को पूरा सुनते हैं। और आप भी बताइए, ऐसा कौन सा गाना है जो आपको कंप्लीट याद है, सिर्फ रील वाला पार्ट नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाइड आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो मुकेश जी।
1: कौन?
0: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली थोड़ा।
1: नहीं हो पाया भाई?
0: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ नहीं हो पाया
0: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
0: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई।
0: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
0: सर, वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया। मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
0: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
0: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
0: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है?
0: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
0: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दू
0: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
0: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: क्या गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
0: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया।
1: उसमें
0: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
0: अच्छा
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
0: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है कराने की।
0: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
2: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
2: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Desi khana,
7: desi shopping,
6: desi culture
7: aur desi entertainment.
6: Bas ek hi destination.
7: Indo-American Community Fair, September 12th aur 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
8: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
9: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti.

0: अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
7: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
8: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
7: Wait, they can see us on Sunday?
8: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
9: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है।
10: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
9: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
8: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
11: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
12: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
13: कंडीशंस अप्लाई।

कुछ गाने हम अकेले नहीं सुनते, उनके साथ घर के लोग, पुरानी ड्राइव्स, शादियों की मस्ती और पूरी पूरी मेमोरीज ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक ऐसी आवाज़ है जिसने हमें कई सारे ऐसे गाने दिए हैं। जी हाँ, सोनू निगम की आवाज़। यार इस आवाज़ में तो जैसे हर जनरेशन के लिए एक गाना है। किसी के लिए संदेशे आते हैं, किसी के लिए सूरज हुआ मध्यम, किसी के लिए मैं अगर कहूँ तो किसी के लिए अभी मुझ में कहीं। और शायद इसीलिए जब भी अपने फैमिली के साथ एक स्पेशल इवनिंग प्लान करनी है ना, तो सोचिए कि अटलांटिक सिटी के ग्रैंड वेन्यू में कंफर्टेबली बैठकर लाइव म्यूजिक और सामने वो आवाज़ जिसके गाने आप सब ने अपनी अपनी जिंदगी के अलग अलग चैप्टर्स में सुने हैं। जी हाँ दोस्तों, सोनू निगम रेवोल्यूशन टूर इस शुक्रवार सितंबर 11 हार्ड रॉक लाइव ईटस एरेना अटलांटिक सिटी में आ रहा है। एंड इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन। तो यार कॉन्सर्ट का कैनवस तो ग्रैंड ही होने वाला है, और अगर आप अपने फैमिली के लिए प्लान बनाना चाहते हो तो जल्दी से टिकट बुक कर लीजिए फ्रॉम टिकट मास्टर या फिर saiusainc.com या फिर sulekha.com। और मिर्ची लिसनर्स, टिकट लेने के साथ अपनी बॉलीवुड नॉलेज भी टेस्ट कर लो, क्योंकि कॉन्टेस्ट का टाइम आ चुका है। आपको बस इतना बताना है कि यार सोनू निगम ने कौन सा एक ऐसा गाना गाया था जिसमें उन्होंने 54 डिफरेंट वॉइस मॉड्यूलेशन यूज किए थे, मतलब अलग अलग आवाज खुद ही बना के 54 अलग अलग आवाज और वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करके उन्होंने ये एक गाना गाया था। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI टाइप कीजिए सोनू और आपका जवाब, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपना जवाब भेज सकते हो 9033647244। अब ऐसे गाना सुनोगे तो लगेगा पूरी सिंगर्स की बारात आ चुकी है, लेकिन माइक के पीछे से वे की आवाज थी सोनू निगम। तो चलिए रिवॉल्यूशन का काउंट डाउन कंटिन्यू करते हैं सोनू निगम के खूबसूरत गाने के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: नहीं।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
9: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
10: कंडीशंस अप्लाई।
11: किसका है ये
12: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
13: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
14: Friday, 11th September, 8:30 PM. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
13: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and saiusainc.com.
15: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
16: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
17: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
18: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
17: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
19: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
20: Tera kya hoga, Kalia?
21: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
20: अब मिर्ची खा।
22: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
23: शाम शादा, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
24: लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से

एक ही आवाज़ निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफ़र चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल, गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है, और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कंफर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. presents सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
7: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
8: Plus, grooms के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Islington.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
13: Hidda!
14: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
15: Sneakers, Kanjivaram sari aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
16: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
17: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
18: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
19: कंडीशंस अप्लाई। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
19: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
19: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
19: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: घर में चार लोग और चार अलग मूड्स हो तो OTT चूज करना भी ना फैमिली मीटिंग बन जाती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और इस वीकेंड तो मीटिंग और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हिस्ट्री और एक्शन का मूड है तो द रिवॉल्यूशनरीज, जहां भुवन बम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह प्रजिता यंग फ्रीडम फाइटर्स की कहानी लेकर आ रहे हैं। क्राइम थ्रिलर चाहिए तो घमासान में अरशद वारसी और प्रतीक गांधी आमने सामने, और फैमिली के साथ कुछ हल्का फुल्का देखना है तो चुंबक में नीना गुप्ता, सुमित व्यास और देवन भोजानी के साथ कॉलोनी वाली कॉमेडी केओस लेकर रेडी रहने वाले हैं। मतलब यार एक स्क्रीन लेकिन मूड के हिसाब से 3 कंप्लीटली डिफरेंट डेस्टिनेशन। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आप OTT पर जॉनर चूज करते हो, स्टोरी देखते हो या कास्ट देखते ही प्ले का बटन दबा देते हो? जरूर बताना ऑन इंस्टाग्राम @RJMirchiSiddhi. और वैसे वॉच लिस्ट तो आप संभाल ही लेंगे, प्ले लिस्ट हम संभाल लेते हैं। अगला बॉलीवुड गाना मिर्ची पर, ओनली फॉर यू, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

इस एक डेट ने बॉलीवुड ऑडियंस की मेमोरी को जितना टेस्ट किया है ना, शायद ही किसी स्कूल एग्जाम ने टेस्ट किया होगा। तारीख 2 अक्टूबर, शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, विजय सारगांवकर ने हम सबको एक चीज सिखा दी, दृश्यम देखते वक्त आंखों से ज्यादा दिमाग खुला रखना पड़ता है। और अब दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर आ चुका है, रिलीज डेट वही पुरानी 2 अक्टूबर। अजय देवगन और तब्बू की वो कैट एंड माउस गेम वापस है, लेकिन इस बार एक और जबरदस्त प्लेयर एंटर हुए हैं और वो है जयदीप अलावत। वैसे ट्रेलर देख के ना मैं स्टोरी प्रिडिक्ट नहीं करने वाली, क्योंकि दृश्यम के साथ ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही महंगा पड़ता है। बस इतना कहूंगी कि विजय सरगांवकर ने पहले पुलिस को कंफ्यूज किया, फिर ऑडियंस को, और अब देखना यह है कि द कंक्लूजन में ये जो उनका गेम है वो किसको पहले समझ आता है। तो मिर्ची का सवाल बहुत ही आसान, दृश्यम 1 और 2 मिलाकर आपको सबसे क्लेवर विजय सरगांवकर मूव कौन सा लगा? टेल मी ऑन @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अब सस्पेंस को थोड़ी देर पॉज करते है, क्योंकि अगले गाने का राज मैं अभी खोलने वाली हूँ। यार, आपके लिए गाना बजाना ही तो मेरा काम है। तो चलिए सुनते हैं अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: firma la burga. Milci, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल
2: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। अच्छा चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा
2: यार रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: किसका है ये तुमको?
6: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
7: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. proudly presents सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
8: फ्राइडे 11th September 8:30 PM.

0: Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
1: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
9: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
10: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है।
11: संडे सितंबर 27th 4 PM, जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर, ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट प्रयोगथिएटर.com।
12: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
16: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
15: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
17: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। Buy now and pay later. आरके ज्वेल्स,
18: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
19: कंडीशंस अप्लाई।
20: तेरा क्या होगा कालिया?
21: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
20: अब मिर्ची खा।
22: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
23: शाम शानदार, लेट्स डू नौटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
24: कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि ऑप्शंस क्या है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और लाइफ के बड़े डिसीजंस में हम अक्सर सिर्फ दो चॉइसेस देखते हैं, यस या नो, अभी या बाद में, लेकिन बीच में भी कई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और जब बात फाइनेंसेस और होम ओनरशिप की आए तो डिसीजंस लेने से पहले अपने ऑप्शंस को समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बाय करना हो, रीफाइनेंस करना हो या फिलहाल वेट करना हो, पहले समझिए कि आपके ऑप्शंस क्या है, और वही सिंप्लीफाई करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
25: जय साईराम म्यूचुअल लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। वेदर वाइज वी आर ब्लेस्ड। US markets are underperformed because of rising treasury yields. Don't let today's rate stop you from tomorrow's home. If you are thinking about buying your first home right now, I want you to hear this. Yes, mortgage rates are higher than many of us would like. Yes, home prices can feel intimidating. And yes, it's easy to turn on the news and hear another headline about rates and think, I'm just going to wait. But here's something I want you to remember. Don't make a permanent decision about your future based on temporary number. As a mortgage loan officer, my job isn't to tell you that buying a home is right for everyone. My job is to help you understand your options and figure out what actually makes sense for your budget and your situation. Maybe the answer is to buy now. So call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate 6.625%. 20-year fixed mortgage rate, 6.5%. 15-year fixed mortgage rate, 6%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. And if you do buy today and mortgage rates eventually come down, there may be opportunities in the future to refinance if the numbers and your circumstances make sense at that time. And remember, Lion Mortgage offers zero closing cost refinance option. The important thing is this: don't let fear make the decision for you. So friends, buying your dream home or refinancing, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
0: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
19: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
19: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
26: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
27: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
28: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
29: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
30: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
31: निहाल सिंह नो बंगाली कुड़ी नाल किवें होया प्यार?
32: यू बॉयफ्रेंड?
33: नो बॉयफ्रेंड।
32: असेम, नो गर्लफ्रेंड।
31: कि निहाल बंगाली कुड़ी दी सच्चाई फड़ पाएगा? वेखो सिंह वर्सेस कौर 2 releasing on 11th September, starring Gippy Garewal, Shehnaz Gill, directed by Navneet Singh, produced by Gippy Garewal, Ravneet Kaur Garewal, Shrikant Mohta and Mahendra Soni.
12: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
17: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
18: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
28: कंडीशंस अप्लाई।
18: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sono Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
3: Listener MA, back to back gana sunega.
34: Back to back gana sunega.
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
23: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
5: कुछ कॉन्सर्ट्स का काउंटडाउन कैलेंडर से नहीं गानों से होता है और आज मिर्ची पर वो काउंटडाउन फुल वॉल्यूम में होने वाला है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आप।

इमर्जी सिद्धि, और सबसे पहले आप सबको बहुत सारा शुक्रिया, एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन द सोनू निगम कॉन्टेस्ट. आपके आंसर्स, आपके फेवरेट सॉन्ग्स और इतना सारा एक्साइटमेंट देखकर एक बात तो क्लियर है, न्यू जर्सी इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर सोनू निगम. और इसी एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए अब मिर्ची पर सुनेंगे सोनू निगम के बैक टू बैक गाने, क्योंकि कल यानी शुक्रवार सितंबर 11 को सोनू निगम लेकर आ रहे हैं रिवॉल्यूशन टूर एट हार्ड रॉक लाइव ईटस एरिना अटलांटिक सिटी में, प्रेजेंटेड बाय अमित जेटली ऑफ सा यूएसए आईएनसी. तो अगर टिकट्स अभी तक नहीं लिए तो चेकआउट ticketmaster.com, saiusainc.com या फिर sulekha.com, क्योंकि बहुत ही कम टिकट्स बचे हैं, तो जल्दी से जाइए. और अब बातें कम, म्यूजिक ज्यादा, सोनू निगम बैक टू बैक ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में शायद

0: ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का। इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखा हो, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
7: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: कंडीशंस अप्लाई।
9: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 7323666777।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
5: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
4: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
5: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
4: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islip.
12: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
13: एक सूटकेस में कितने सपने फिट हो सकते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी कोई पढ़ने या करियर के लिए दूसरे देश जाता है ना, सूटकेस में कपड़े कम होते हैं लेकिन उम्मीदें ज़्यादा होती है। हर फ्लाइट एक नई बिगनिंग लेकर उड़ती है। और अगर आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है और हेल्थ केयर फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो एम्स एजुकेशन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाया है। एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए F1 वीज़ा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने पर I-20 इश्यू की जा सकती है। एक्सप्लोर कीजिए सर्जिकल, MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, एनेस्थीशिया और न्यूरोडायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज के AAS डिग्री प्रोग्राम्स। और साथ ही रेपिटेड मेडिकल सेंटर्स में अनपेड क्लिनिकल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, जो देते हैं रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आज ही विजिट कीजिए aimseducation.edu. एम्स एजुकेशन, स्टडी इन अमेरिका, ट्रेन इन हेल्थ केयर एंड टेक योर करियर फॉरवर्ड। और चलिए, सपनों की बातें हो रही है तो सपनों से भरा ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज़ ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे। और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था। और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मज़े की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे। मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब?
0: नहीं,
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे कपड़े
1: कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
0: हैं। सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है नहीं।
0: दिखाइए,
1: दिखाइए आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
7: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
6: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
8: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम, द सेम ट्रेडिशनल टेस्ट, फ्लेवर एंड फ्रेशनेस गारंटीड।
9: Amit Jetli of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
11: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
12: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: ओह नो,
16: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
17: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
18: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
17: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
18: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
8: finest kitchens in India. A thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes. Comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness. Guaranteed. Deep cow, to jano.
15: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
19: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
20: कंडीशंस अप्लाई.
21: तेरा क्या होगा कालिया?
22: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
21: अब मिर्ची खा.
23: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
24: ब्रॉट टू यू बाय डीप फूड्स. डीप फूड्स खाओ तो जानो.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आज का कल का, लव आज कल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्ट ब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पे, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोकझोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मज़े की बात तो ये है कि इम्तियाज़ अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होके भी मूवी में ख़त्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है, जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। वैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजी मिर्ची सिद्धी SIDDHR। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजारी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: किसका है ये तू?
9: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
10: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
11: Friday, 11th September, 8:30 PM.

0: This history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
1: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
2: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
1: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
3: कंडीशंस अप्लाई.
4: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
6: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
7: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
6: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
8: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
9: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
10: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
11: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
12: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
14: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है. एक ही होता है. जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
16: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था. कंपोज्ड बाय प्रीतम, 2009 का लव आजकल का एल्बम. और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है. आर फेवरेट आहू आहू. क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है. फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं. क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है. और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था और ना सिर्फ उस वक्त, अभी भी उतना ही ग्रूविंग है. और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है, उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है. वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है. तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो. टेल मी ऑनेस्ट कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया या फिर फिंगर टॉप किया या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट. दोस्तों मुझे जरूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं. टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्दी SIDDHI. और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आऊं आऊं राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: फीलिंग्स
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Beta, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ dialogue ही है।
5: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
7: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर, फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SciUSAInc.com.
1: हेल्थकेयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
8: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
1: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu. योर हेल्थकेयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
12: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: कंडीशंस अप्लाई।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
16: श्याम सरदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
17: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कंपोज बाई प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफ़ी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज़ ही ऐसी थी, जो रॉनेस उनकी आवाज़ में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियां महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मज़े की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्सेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज़्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियां फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियां फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ खास गाने और उनके कुछ खास किस्से। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गेरुआ ये गाना सुनते ही ना एक अलग ही ड्रीमी सी फीलिंग आ जाती है। पर एक बहुत ही अमेजिंग सा फन फैक्ट है इस गाने का कि यार अरिजीत सिंह ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया था तो बस एक टेक में रिकॉर्ड किया था। अब ऐसे तो कई सारे गाने हैं जो एक टेक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन ये गाना उसमें भी खास है क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना बस डायरेक्टर ने बोल दिया था कि वार्म अप के लिए एक रफ टेक ले लो, मतलब जस्ट एक यू नो एक रिहर्सल टेक ले लो। और जब वो रफ टेक अरिजीत सिंह ने गाया तो वही बन गया फाइनल मास्टर टेक। और टीम ने कहा कि यार ये आवाज़ ही इतनी अमेजिंग है, इतना एफर्टलेस डेप्थ है इस आवाज़ में, इस टेक में, कि इसी टेक को फाइनल करते हैं। तो बस फाइनल टेक कभी किया ही नहीं और यही टेक फाइनल बन चुका था। तो मतलब बोलते हैं ना कभी कभी प्रैक्टिस भी परफेक्शन बन जाती है, तो अरिजीत जी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। और शायद इसलिए ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिंगर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। वैसे आपका फेवरेट अरिजीत सिंह का गाना कौन सा, टेल मी ऑन इंस्टेंट आरजे मिर्ची सिद्धि IDDHI। और फिलहाल सुनते हैं ये वन टेक सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह, गेरुआ, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La
1: virtua la burga. Mirci, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ, नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की.
1: हाँ
2: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक.
1: क्या समझ रहे हो भाई?
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना.
8: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार.
9: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है.
10: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक. बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com.
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
12: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
13: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए. आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर. बाय नाउ एंड पे लेटर. आरके ज्वेल्स,
14: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
15: कंडीशंस अप्लाई.

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
1: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
7: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
8: बॉलीवुड म्यूजिक का डिबेट कभी खत्म ही नहीं होता, ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज बोल्ड। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और पुराने गाने ना यार टाइम लेते थे दिल में बसने के लिए, लेकिन नए गाने इंस्टेंट वाइब देते हैं। पहले लिरिक्स डायरी जैसे लगते थे, लेकिन आज बीट्स प्लेलिस्ट फ्रेंडली हो गए। दोनों का ना अपना ही अलग चार्म है, एक मेमोरी बनाता है लेकिन दूसरा मोमेंट बनाता है। और शायद इसी बैलेंस में बॉलीवुड म्यूजिक सरवाइव कर रहा है। वैसे आप भी बताओ दोस्तों, आपका मूड आज किस तरफ है, रेट्रो या रीसेंट? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल मेरा मूड क्या कहता है वो तो आप अभी सुनेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Sri Krishna Mandir, Morganville.
5: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
6: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
7: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
8: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन वीक शॉपिंग मॉल के अंदर।
7: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
9: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर। बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
10: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
11: कंडीशंस अप्लाई।
12: किसका है ये तो?
13: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
14: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
15: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
14: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट Ticketmaster एंड saiusainc.com।
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
19: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
20: कभी कभी कोई गाना ऐसा होता है जो बजते ही शाम का मूड चेंज कर देता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और 2000 एरा का एक ऐसा ही टाइमलेस ट्रैक है कल हो ना हो। यार जैसे ही उसका सॉफ्ट पियानो इंट्रो शुरू होता है ना, सडनली सब कुछ थोड़ा सा स्लो लगने लगता है। ड्राइव हो, चाय हो या बस विंडोज से बाहर देखना, यार इस गाने की खूबसूरती ही ये है कि ये लाउड नहीं है पर इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा डीप है। सिंपल सी मेलोडी है, सोलफुल सी आवाज़ है, वो भी सोनू निगम की, और वो लाइन जो याद दिलाती है कि हर दिन को ना थोड़ा और अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसीलिए जब भी ये ट्रैक रेडियो पे आता है ना, लोग ऑटोमेटिकली वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो ना मूड बन जाते हैं। तो दोस्तों आप भी बताना कि कौन सा ऐसा बॉलीवुड का गाना है जो सुनते ही आपको भी वो पॉज और फील मोमेंट मिलता है। DM ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए कल हो ना हो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: किसका है ये तो?
6: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
7: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
8: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ईटस अरेना अटलांटिक सिटी।
7: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
0: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
9: गहने खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए। आरके ज्वेल्स देता है बेस्ट ऑफर, बाय नाउ एंड पे लेटर। आरके ज्वेल्स,
10: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
11: कंडीशंस अप्लाई।
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
16: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
17: शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।